प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

कि अंगिरा विश्वास नामक बंधन तगले चाप करा पहला पुत्र नामक सर ज्योति नामक यक्ष तथा सर्प नामक राक्षस होते हैं। भाद्रपद महीने में सूर्य विवस्वान स्वरूप हो जाते हैं, अपनी 300 किरणों के साथ चमकते हैं। इनके साथ ऋषि भृगु, उग्रसेन गंधर्व, अनुम्लोचा अप्सरा, आपूर्ण यक्ष, शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस होते हैं। अश्विनी मास में इनका स्वरूप पूषा होता है, अपनी 200 किरणों से ही चमकते हैं। इनके साथ गौतम ऋषि, घृताची अप्सरा, सुषेण गंधर्व, धनंजय नाग और वात नामक राक्षस होते हैं। कार्तिक में सूर्य पर्जन्य स्वरूप होते हैं, अपनी 1100 किरणों से चमकते हैं। इनके साथ भरद्वाज ऋषि, विश्वाची अप्सरा, विश्वावसु गंधर्व, सेनजित यक्ष, ऐरावत सर्प तथा अन्य राक्षस होते हैं।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: ओम नमः शिवाय शांताय।

नमः। प्रातः काल की इस पुण्य बेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। भगवान शिव की आराधना में आप लोग लगे हैं। भगवान शिव जो बिना कानों के भी सुनते हैं, शब्दम ग्रहणस्यास्य श्रावास्त्वम ही जिघ्रय घ्राणस्त्वम व्यंग्रियायासि दूरात् व्यक्षः पश्ये त्वं रसज्ञोपजिह्वा कस्त्वां सम्यग् वेत्यस्त्वां प्रपद्ये। ऐसे भगवान जो बिना कान रहित होकर के शब्द सुनते हैं, नाशिका विहीन होकर के सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर के सब कुछ देखते हैं और जिह्वा रहित होकर के समस्त रसों के ज्ञाता हैं, भला आपको सम्यक रूप से और कौन जान पाया है। नो वेदस्त्वामीश साक्षाद् धिवेदयो वा विष्णुर्नो विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रा नेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेदस्त्वमास्त्वां प्रपद्यै। आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है, इसलिए मैं आपके शरण में हूँ। हे भगवान, आपके रहस्य को न तो साक्षात वेद ही जानता है, नहीं विष्णु, न अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, न योगींद्र और न इंद्र आदि प्रधान देवताओं को ही इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। इसलिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे भगवान,

भूतौ पीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेदस्त भजे त्वाम्। इसलिए जिनका न कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है और न देश है, ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के

अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसीलिए मैं निरंतर आपका भजन करता हूँ। हे भगवान, हे त्वं तत्तः सर्वत्वं हि

0: तह किम नास्यस्त्वाम नतोहम। इसलिए हे भगवान, आप सर्वस्वरूप हैं, ये सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है, आप गौरी के प्राणनाथ दिगंबर और शांत हैं, हे प्रभु मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।
2: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। ते ध्यानस्यम कृताम धानस्य फलम देहाधाकरम उद्रित्तितम च कुलम तेषाम येनम शिवम समुपासते शिव नामस्य विभूतस्य तथा रुद्राक्ष एवं च इति त्रिनम महापुण्यम

विधानां प्रोक्तां सर्व पाप विनाश्यन्ति अनेक जन्म तिथिभ्यो तपस्यत्वं मुनीश्वरा शिवनामिं भवे भुक्तां सर्व पाप पहारिणी विलोकस्य वेदानखिलां शिवनामं जपं परे संसार तरणे पाये इति पूर्णे विधिनश्यन्ति। वही धन्य और कृतार्थ है, उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है जो शिव की उपासना करते हैं। शिव का नाम, विभूति भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की युक्ति त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्म तक तपस्या की है उसकी शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है, संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके संपूर्ण व्रती महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम

0: उपाय है। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरं श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री राम दूताय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। आज संडे 2 अगस्त श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। शिव सती चरित्र का जो पाठ हो रहे हैं, जहाँ कल से विराम दिया था, हम लोग वहीं से आगे बढ़े। बालकांड दोहा संख्या 49 से

आए मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए।

0: के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिरे रहे। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है उनके प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय दर ही कछु आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठे हैं। चले आज के कार्यक्रम को यही विराम दें, कल यही से हम आगे बढ़ेंगे। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।
2: रेडियो मॉरिशस 89 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
3: रेडियो मॉरिशस।

0: ये सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: आर्य सभा मॉरिशस के माध्यम से इस मंत्रोपहार को आप स्वीकार कीजिए। प्रस्तुतकर्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं

नम श्रोताओ, ये मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय का, जिसको हम ईशोपनिषद भी कहते हैं, ये मंत्र उसका पहला ही मंत्र है। कितना प्यारा मंत्र है। इस जगत में हमारा क्या है? हम सोचते हैं कि धन मेरा है, पद मेरा है, विद्या मेरी है, पता नहीं क्या क्या हम सोचते हैं कि मकान मैंने बनाया तो ये मेरा है। मम की जो भावना है, परमात्मा क्या कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम्। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई दे रहा है, इस सबके भीतर वो चैतन्य ईश ईश्वर छिपा हुआ है। ईशा वास्यम, वास्यम का मतलब है आच्छादित, छिपा हुआ है एक तरह से कण कण में। इसलिए मंत्र के दूसरे चरण में कहा है ना, यत्किंच जगत्याम जगत, अर्थात जो कुछ भी है। जगत्याम का मतलब है संसार के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, उसके अंदर एक एक कण के अंदर वो ईश मानो छिपा हुआ है। जैसे दूध के अंदर दही है, जैसे काष्ठ माने लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी हुई है, ऐसे ही परमात्मा भी दुनिया के हर पार्टिकल्स में, हर कण कण में छिपे हुए हैं। तभी तो कहा है ना, उद्घोषणा किए, ईशा वास्यम इदम सर्वम। इदम सर्वम का मतलब है ये जो भी स्थावर जगत है, जंगम जगत है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष, जितना भी ये संसार है, जितना भी ये ब्रह्मांड है, जितना भी ये यूनिवर्स है, उसके अंदर वह ईश, वह परमात्मा मानो गुप्त रूप से छुपे हुए हैं। क्या करना है हमको? तेन त्यक्तेन भुंजी था, उनके द्वारा दिए गए जो पदार्थ है, मनुष्य जीवन है, उसका हम अच्छी तरह से उपयोग करें, अच्छी तरह से उपभोग करें। और क्या करना है हमको? माँ गृध, लालच की भावना नहीं रखनी है। सब कुछ मुझे ही मिल जाए, मैं ही संसार का अधिपति बन जाऊं, मैं ही सब कुछ प्राप्त करूं, ऐसा नहीं सोचना है। माँ गृध, लालच मत करो। मनुष्य जीवन में तीन प्रकार के शत्रु माने हैं ना, काम क्रोध लोभ। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादे तत्रयम् त्यजेत त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना। हमारे जीवन के नष्ट करने वाली तीन चीजें हैं, अत्यधिक कामना, डिजायर्स, क्रोध, अत्यंत क्रोध की भावना, और लोभ, जिसके लिए ये मंत्र हमें कहता है माँ गृध, हम लालच न करें। और फिर प्रश्न दिया है, लालच क्यों न करें? तो कहते कस्य स्वित धनम, बताओ संसार के अंदर ये धन किसका है? न आपका है, न मेरा है। इस धन के ऊपर यदि मालकियत है, यदि, तो वो केवल और केवल ईश्वर की है, भगवान की है। वो कभी भी जो है वो घोषणा नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। ओम शांति।

0: मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मास और श्रावण मास के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम वेद संदेश का श्रवण करने वाले आप समस्त श्रोताओं को आचार्य बितुला का सादर सप्रेम नमस्ते। आइए सुनते हैं वेद मंत्र पाठ अर्थ सहित। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च कीवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों और सब जगत के स्वामी सुख स्वरूप परमात्मा को हम सबका नमस्ते हैं। ओम स्कंभे नीमे विष्टभिते द्योश्च भूमिश्च तिष्ठत स्कंभ इदं सर्वमात्मन्वद् यत् प्राणं निमिषसंचयत्। परमेश्वर के सामर्थ्य से आकर्षण द्वारा सूर्य पृथ्वी आदि लोक अपने अपने स्थान पर और आत्मा वाला जंगम और स्थावर जगत वर्तमान हैं। ओम तिस्रोह प्रजा अत्यायमायन न्यन्या अर्कम भीतो विशन्त ब्रिहन हतस्थौ रजसो विमानो हरितो हरिणीरा विवेश। परमेश्वर के नियम से पदार्थ कार्य दशा प्राप्त करके आगमन गमन करते हैं और दूसरे नित्य कारण रूप पदार्थ परमात्मा के सामर्थ्य में रहते हैं। इन सब पदार्थों की यत्ता वही परमात्मा सब दिशाओं में व्याप्त होकर जानता है। ओम द्वादश प्रधयश्चक्रमेकम् त्रीणि नभ्यानिक उतचिकेत तत्राहता स्त्रीनि शतानि शंकव षष्टिश्च खीला अविचाचलाये। जैसे परमेश्वर ने अपने अपने प्रयोजन के लिए वर्ष के महीने ऋतुएं और दिन आदि बनाए हैं, वैसे ही मनुष्य यान विमान नौका आदि में कलायंत्र आदि लगाकर जाना आना आदि व्यवहार किया करें।

कज तस्मिन् हापित्वा मिच्छन्ति यईशामीक ईकज। मनुष्यों को खोजना चाहिए कि इस शरीर में कौन से शुभ और अशुभ संस्कारों का कारण जीवात्मा के साथ पांच ज्ञानेन्द्रिय अर्थात कान, त्वचा, नेत्र, जीवा, नासिका और छठे मन का संबंध है। ओम।

उत्साही विचारवान पुरुष परमेश्वर में विश्वास करके एवं हितकारी पदार्थों का सेवन करके अपनी दूरदर्शिता से मानसिक और शारीरिक बाधाओं को हटाकर अटल सुख भोगते हैं। भगवान की कृपा से संसार में उत्पन्न सभी औषधियाँ रोगों एवं कष्टों के उपचारक हैं। औषधियों को ग्रहण करते समय भी परमात्मा का नाम लेना अथवा यथोचित तत्संबंधी मंत्र का उच्चारण करना श्रेयस्कर होता है। औषधि एवं मंत्र का प्रभाव शरीर मन और आत्मा में अवश्य पड़ता है। परमात्मा की असीम कृपा से हमारे रोग आदि विघ्न दूर हो, शरीर मन और आत्मा के कष्ट दूर होने से ही सुख की अनुभूति होती है।

इस संसार में स्वास्थ्य बढ़ाने वाली औषधियां जल थल वन एवं पर्वतों में पहले से ही विद्यमान हैं। मनुष्य को जानना चाहिए कि अलग अलग स्थानों में जो औषधियां होती हैं वे सब जीवों के कल्याण के लिए हैं। सोमलता गिलोई आदि औषधियां धरती पर सुरक्षित रहती हैं। हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यह अत्यंत कल्याणकारी है। अतः परिपक्व औषधियों को वैद्यक शास्त्र के अनुसार अनुकूल विधान से सेवन करें। जैसा वैद्य बताते वैसा ही प्रयोग करें। इस प्रकार सेवन की गई औषधियां शरीर के सब अंगों में व्याप्त होके शरीर के रोगों एवं दोषों को छुड़ाकर शरीर को बलवान बनाती हैं और सुख को शीघ्र विस्तार करती हैं।

जैसे जौ, सोमलता, गिलोई, दूध आदि औषधियों के सेवन से शरीर की पुष्टि होती है, शरीर बलवान और स्वस्थ बनता है, वैसे ही माता पिता, आचार्य, सद्विद्या, उत्तम शिक्षा और सत्य उपदेश द्वारा संतानों को पुष्ट और बुद्धिमान बनाए। स्वास्थ्य, धन और विद्या धन से ही संसार के अन्य धन शीघ्रता से प्राप्त किए जाते हैं। गाय, भूमि, पैसे इत्यादि धन माता पिता के होते हैं। जो माता पिता का धन है वह भाग संतान का भी है, और जो संतान का है वह माता पिता का भी है। ऐसा समझकर सब परस्पर प्रीति से बरतें, निरंतर सुख को बढ़ाते रहें और परिश्रम से प्राप्त किए गए धनों की रक्षा करें।

0: A very good morning आप सभी को सुप्रभात घड़ी मिलाते चलिए सुबह की ठीक 6 बज रही है समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का तो आइए इसे हम अभी के साथ है सुनते हैं नमस्कार आपको अभी
1: नमस्कार रिया श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ जी हां कॉमनवेल्थ गेम्स में रेमी फेये ने मॉरिशस को फिर से दिलाया सोने का स्वाद 33 साल के मॉरिशस के जूडो खिलाड़ी ने 90 kg से कम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश का दिल जीत लिया 2022 के बर्मिंगम कॉमनवेल्थ खेलों में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाले रेमी फेये इस बार और अधिक मजबूती और दृढ़ संकल्प के साथ वापस आए ताकि पोडियम में सबसे ऊपर की जगह हासिल कर सके वेटलैंड्स का संरक्षण और बेहतर प्रबंधन करना यही वेटलैंड्स बिल का मुख्य उद्देश्य है जिसे जल्द ही राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा इन इकोसिस्टम्स की सुरक्षा को मजबूत करने के वास्ते इस कानून को का लंबे समय से इंतजार था दलदल नदियों के मुहाने मैंग्रोव्स और कुछ तटवर्तीय इलाके ये सभी स्थान प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बाढ़ के खतरे के असर को कम करने में मदद कर सकते हैं जाना बेरोंजे ने वेटलैंड्स बिल पेश किए जाने का स्वागत किया विपक्ष की सांसद और पूर्व जूनियर मंत्री के अनुसार ये सुधार एक सकारात्मक कदम है हालांकि उनका मानना है कि वेटलैंड्स की सुरक्षा केवल मंत्रियों के फैसलों पर निर्भर रहने के बजाय एक स्वतंत्र और पारदर्शी व्यवस्था पर आधारित होनी चाहिए इस्तीफा देना या फिर स्पेशलाइजेशन यानी आगे की पढ़ाई का विचार छोड़ना सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों के सामने फिलहाल यही दुविधा खड़ी कर दी गई है स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिजू ने राष्ट्रीय सभा में इस बात की पुष्टि की है उनके अनुसार ये पाबंदी जरूरी है क्योंकि लगभग 140 डॉक्टर पहले से ही स्टडी लीव पर है जबकि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पेरू के नाजका इलाके में पर्यटकों को ले जा रहा एक विमान क्रैश हो गया विमान में सवार सभी 13 यात्रियों की घटना स्थल पर मौत हो गई ये विमान नाजका लाइंस की हवाई यात्रा के लिए उड़ान भर रहा था और अंत में मौसम का हाल आम हालत पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज सुबह व दिन के दौरान बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी खासकर पूर्वीय ढलानों और ऊंचे इलाके पर रात के दौरान बरसाती मौसम बरकरार रहेगा हवा पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठाएंगी खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगुनों के उस पार अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच आज सूर्योदय 6:39 पर जबकि सूर्यास्त शाम के 5:52 पर
2: RM3 Radio

जाता है जो मुसलमान ईमान और तौहीद पर कायम रहता है वो जहन्नम से निजात की सबसे मजबूत बुनियाद हासिल कर लेता है लिहाजा हर मुसलमान को अकीदाए तौहीद की हिफाजत करनी चाहिए और हर किस्म के शिर्क से बचना

मोहतरम सामीन, जहन्नम का अजाब इंतहाई सख्त और दायमी है। दुनिया की चंद लम्हों की ख्वाहिशात के लिए अपनी आखिरत को तबाह न करें। नमाज, रोज़ा और तौहीद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हर गुनाह के बाद फौरन तौबा करें। अल्लाह ताला रहीम है और अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। आज अमल का वक्त है, कल हिसाब का होगा। अपने घर वालों को भी नेकी की तलकीन करें, नेक सोहबत इख्तियार करें, कुरान और सुन्नत को मजबूती से थाम लें। अल्लाह ताला हम सब को जहन्नम से महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सामीन मोहतरम, आइए सबा खैर के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम है भक्ति में शक्ति। हमारा सादर प्रणाम आप सभी सुनने वालों को। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम हमेशा भगवान गणेश जी का नाम लेकर करेंगे। तो ये प्यारा सा भक्ति गान आप सभी सुनने वालों के नाम, आपको पता है कि श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है और हम बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ हम शिव जी को पूछते हैं। तो चलिए उनके नाम जो है ये प्यारा सा गीत, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन तमाम श्रोताओं के नाम जो है ये प्यारा सा भक्ति गान आपकी सेवा में करने जा रही है। शुरुआती दौर पे सबसे पहले हम भगवान गणेश जी का नाम लेंगे।

भक्ति में शक्ति कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। श्रावण मास का पावन महीना है, श्रोताओं भगवान शिव जी को समर्पित है। और आपको पता है कि श्रावण मास जो है सनातन परंपरा का अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। ये महीना जो है भगवान शिव की आराधना, श्रद्धा और आत्मिक जागरण का प्रतीक है। तो चलिए, मान्यता है कि इस पूरे मास में सच्चे मन से की गई शिव उपासना, जप, ध्यान और सेवा विशेष पुण्यदायी होती है।

फटाओ भक्ति में शक्ति कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आपको पता है वर्षा की जो बूंदें हैं हमारे लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। ये जो है वर्षा की जो बूंदें हैं

सूखी धरती को जीवन देती है। और वैसे ही जब हम भक्ति की बात करते हैं, विश्वास जो है, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे जीवन में नई आशा जो है, नई उमंग, नई ऊर्जा, नया उत्साह के साथ जो है हम इससे भर देती है। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओ, जब हम बात कर रहे हैं श्रावण मास के बारे में, तो ये महीना केवल व्रत और पूजा का नहीं बल्कि अपने विचारों को पवित्र भी बनाना है। क्रोध, अहंकार, इन सब को हमें त्याग करना है। हमें जो है प्रेम, करुणा और सेवा का जो भावना है, हमें बनाए रखना है। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

漫漫旅途有幸结伴同行，岁月沉淀下许许多多温柔瞬间，有些情愫含蓄内敛，悄然藏在心间，请欣赏有一点心动。

心底珍藏的故事流同流水悠悠绵长，书写独有的水中传奇。请欣赏谭咏麟、李健带来的神奇演绎《水中花》和《水传奇》。

愿所有相逢与经历都成为馈赠，往后前路一路生花，请欣赏一路生花。

0: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अभी उदय से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। वेटलैंड्स का संरक्षण और बेहतर प्रबंधन करना, यही वेटलैंड्स बिल का मुख्य उद्देश्य है, जिसे जल्द ही राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा। इन इकोसिस्टम्स की सुरक्षा को मजबूत करने के वास्ते इस कानून का लंबे समय से इंतजार था। दलदल, नदियों के मुहाने, मैंग्रोव्स और कुछ तटवर्तीय इलाके, ये सभी स्थान प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बाढ़ के खतरे के असर को कम करने में मदद कर सकते हैं। मॉरिशस में 3 ऐसे स्थान हैं जो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, रिविएरा टेरा रूज, ब्लू बे मैरीन पार्क और पॉइंट डिस्नी शामिल हैं। उन कंपनियों के लिए अच्छी खबर है जिनका वित्तीय वर्ष जनवरी 2026 में समाप्त हुआ। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी ने उनके कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न और 30 अप्रैल 2026 को समाप्त हुई तिमाही के एडवांस पेमेंट सिस्टम विवरण दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। इस बात का ऐलान मंगलवार को जारी एक बयान में किया गया। जमा करने की अंतिम तारीख जो पहले शुक्रवार 31 जुलाई तय की गई थी, अब उसे आगे बढ़ा दी गई है। इस्तीफा देना या फिर स्पेशलाइजेशन यानी कि आगे की पढ़ाई का विचार छोड़ना, सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों के सामने फिलहाल यही दुविधा खड़ी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेजू ने राष्ट्रीय सभा में इस बात की पुष्टि की है। उनके अनुसार ये पाबंदी जरूरी है क्योंकि लगभग 140 डॉक्टर पहले से ही स्टडी लीव पर हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि रूस के मध्य मॉस्को में शनिवार शाम को एक रेस्टोरेंट के पास धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 21 लोग घायल हो गए। ये धमाका तब हुआ जब एक महिला देसी बम लेकर वहां पहुंची। पुलिस ने बताया कि ये धमाका स्थानीय समयानुसार रात के 8 बजे से ठीक पहले कुंद्रिस्काया

0: स्क्वेयर के एक इटालियन रेस्टोरेंट के पास हुआ। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। आइए शोक समाचार सुनते हैं। नंबर 48 मौलाना अब्दुल रशीद नवाब स्ट्रीट प्लेनवेयत में 82 साल की 82 years old की मिसिज बीबी निसान अब्दुल पैदाश नाम कदर वंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के ढाई बजे उन्हीं के मकान नंबर 48 मौलाना अब्दुल रशीद नवाब स्ट्रीट प्लेनवेयत से निकालकर दफनाने के लिए गश्तिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। एसएसओ इलो कंजाब में 28 साल के 28 years old के श्री शुभम ओकिल जिन्हें सब लोग यश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उनकी मां श्रीमती पूनम ओकिल के घर एसएसओ इलो कौंजाब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंजाब की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 3। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3। You're listening to RM3 Radio।

जी 12:11 हुए हैं आज संडे 2 अगस्त रविवार 2 अगस्त 2026 प्रणाम नमस्कार आदाब सिस्टर काल और मॉरिशस के सभी प्यारे श्रोताओं को हमारी ओर से ढेर सारा प्यार माइक पर है देविना और इन फ्री रेडियो मनोरंजन पर आप सबों का हम दिल से स्वागत करते हैं प्यार से स्वागत करते हैं वैसे तो हमारा सुहाना सफर प्रोग्राम अभी शुरू हो रहा है अभी से लेकर 3 बजे तक और आप जानते हैं हमेशा कुछ ना कुछ दिलचस्प लेकर आते हैं कुछ अलग सा तो अभी अभी हम कहेंगे आपको कि क्या होने वाला है स्पेशल आज वैसे आज की यह खूबसूरत रविवार की दोपहर कुछ और भी खास होने वाली है क्योंकि आज का पूरा सफ़र आप सबों के साथ होगा और वैसे आज मौसम कहीं कहीं पर कुछ बारिश की छींटे पड़ रही है और कहीं पर बस धूप निकल चुकी है और कुछ सर्द हवा है बस क्या हो और क्या आप अगर किसी को मिस कर रहे हैं तो उनको याद कर रहे हैं तो उनके लिए गाना

आप मांग सकते हैं ऑन 4028070 साथ में मैसेजेस के लिए 5250 6200। और वैसे ये जो हमारा जो प्रोग्राम है ना अभी के लिए, आप सभी जो हैं आपकी फरमाइशों पर भी ध्यान देंगे, साथ ही आज जो स्पेशल है वो उस महान कलाकार को जिसकी आवाज़ सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, दिल गुनगुनाने लगता है और यादों की महफिल सज जाती है, और एक ऐसी आवाज़ जो हमारे जहन में हमेशा रहती है और हमेशा से हम उनको सुनते आ रहे हैं और सुनते जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के सदाबहार गायक, अभिनेता, संगीतकार, निर्माता और हर दिल अजीज हमारे किशोर कुमार की, जिनका जन्मदिन वैसे आज है 2 अगस्त। आज बहुत से लोग जो है अपना बर्थडे मना रहे हैं, किसी का बर्थडे मना रहे हैं, किसी खास का, या किसी की शादी हो रही है, या फिर जन्मदिन की का सेलिब्रेशन हो, या फिर कोई इवेंट, या फिर कोई आपके पास आया हुआ है घर पर, या किसी से मिलने जाना है, जो भी आप कर रहे हो आज, बस आपके लिए शुभ हो। और वैसे जो हम बात कर रहे हैं ना, आज है 2 अगस्त, आप सभी को हैप्पी बर्थडे जिन जो लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं। मगर 4 अगस्त को यानी कि 2 दिन बाद हम मनाएंगे किशोर दा का हैप्पी बर्थडे। तो बस उन्हीं को याद करते हैं आज, हम बात कर रहे हैं उनके बारे में, वो जो गायक थे, अभिनेता थे, संगीतकार थे, निर्माता थे, और अभी से लेकर 2 बजे तक 70s और 80s के दशक के उनके शानदार नगमे, उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें, यादगार किस्से और उनकी अनोखी शख्सियत की झलकियां हम आपके लिए पेश करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए यादों की पगडंडी पर चलने के लिए, संगीत की मधुर हवाओं में खो जाने के लिए, क्योंकि शुरू हो चुका है सुहाना सफ़र। लेजी आफ्टरनून शो किशोर कुमार जन्मोत्सव विशेष आज है, और अलग से गाने भी आप मांग रहे हैं तो हम चलाएंगे ज़रूर। अभी के लिए आंधी का वो प्यारा सा गाना लता जी और किशोर दा की आवाज़ में।

0: RM3 Radio.
1: जाने जाना

जो आज है स्पेशल किशोर दा और हम जानते हैं बहुत से लोग जो हैं सिंगर को ना उनकी आवाज़ सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं खुश हो जाते हैं तो इसलिए बस मगर ज़्यादा फोकस हम करेंगे 70s 80s वाले गानों पर क्योंकि वैसे किशोर दा की जो का जो करियर की शुरुआत थी ना वो शुरू हो चुका था इन द 50s और 60s वहाँ पर बतौर एक्टर अभिनेता वे आए और इतने गाने वो हैं गाते नहीं थे ज़्यादातर कॉमेडी गाने और 60s late 60s में आते आते उन्होंने एक्टिंग जो है कम कर दिया और ज़्यादातर अपनी गायकी पर उन्होंने वो फोकस किया और आगे चलकर वे इतने बड़े सिंगर बने कि क्या कहें किशोर दा न सिर्फ एक आवाज़ मगर हमारे दिल की धड़कन तो ये सुनिए अपनी तो जैसी तैसी और बहुत से गाने हैं हम जो पॉपुलर हैं लेकर आएंगे कुछ जो बार बार सुनने को नहीं मिलता वो भी लेकर आएंगे अभी के लिए आपके फ़ोन कॉल्स के लिए आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच

0: सफर
1: हमारा क्या होगा जाने, जो भी होगा मंजूर खुदा होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा आप सबों के लिए, हमारे लिए भी, हमारे साथ भी। और अगर अभी आप लोग निकल चुके हैं कहीं, बॉन वायाज आप सभी को, हैव ए सेफ राइड। कुछ लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए अपनों के साथ, कुछ लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, कुछ लोग जा रहे हैं काम पर हमारी तरह, कुछ लोग जा रहे हैं बस ऐसे ही टहलने के लिए। वैसे अगर आप लोग लंच ले रहे हैं, बोन अपेटी, शुभ आहार। वैसे श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है, बहुत से लोग आजकल पूजा पाठ में लगे हुए हैं। वैसे तो रोज़ होता ही है मगर अभी के लिए कुछ खास है ना, तो आप सभी को शुभ जो है कहेंगे श्रावण मास, और आपकी पूजा सफल हो, सभी जो है शांतिपूर्वक रहे, आपके जीवन में सुख शांति हमेशा रहे। बस इसी प्रार्थना के साथ हम अगले गाने की ओर बढ़ते हैं, और सभी को शुभ श्रावण मास कह रही हैं श्याम रघुनंदन जी और खोंगोब, और उनकी जो प्यारी बहन है ना वैजयंती जी, साथ में उनके जो जीजा हैं जसवंत सिंह, रविंदर सिंह और सिमरन सिंह, वे अभी पंजाब में हैं, पंजाब में गए हुए हैं, एक्चुअली वे वहीं पर रहने वाले हैं मगर अभी के लिए पंजाब में हैं। सो बस हमें सुनते रहते हैं, हमारी ओर से आपको प्यार भरा नमस्कार है। और ये जो अगला गाना है आप सुनना चाहते हैं, साथ में श्यामा जी की जो सहेलियाँ हैं वीना रामफुल, नंदिनी ओकरी, विश्वानी दुखी, ऑल्सो उनके जो भाई साहब हैं जयप्रकाश जी, भाभी नम्रता, युधिश और केशव, सभी जो उनके जो वेल विशर्स हैं, उनके जो दोस्त हैं, सहेलियां हैं, आप सभी के लिए ये जो गाना है सावन के झूले परे, वो नहीं जो लता जी की आवाज़ में 1970s वाला है, ये एक अलग ही है। तलत महबूब साहब साथ में लता मंगेशकर जी।

जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते. ऑफ कोर्स जो है आज है बस इसको जी ले मेरी जान. जो गाना है जाएगा स्पेशली शुमे गए की विमला जी और साथ में दीदी माउती के लिए.

0: सुहाना सफर।
1: इस सुहाना सफर में ये जो गाना था ना किशोरदा की मद मस्त आवाज में, ये सैपिया की गाना जो है खास किशोरदा के फैंस के लिए, सभी परिवार के लिए, और ऑल्सो उनके जो परिवार वाले हैं ना

और उनकी जो भाभी है मीरा, सिस्टर हैं अमृता, नेहा, क्षिति, दिव्या, सुधीर, कमलेश, सुधा और जितने लोग हैं ना उनके जो परिवार वाले हैं, इनका नाम नहीं लिया मगर हम आपको याद करते हैं। तो गायत्री जी ने सबको वो श्रावण मास की शुभकामनाएं भेजी हैं और साथ में कह रही हैं कि मौसम बरसाती है सैपिया में, सो बस जो भी कीजिएगा वो अच्छी तरह से कीजिएगा और साथ में सुहाना सफ़र प्रोग्राम का जो है ना आप उनका मज़ा अवश्य लीजिएगा। वैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे गाने हम चला रहे हैं किशोर दा की जो कभी कभी बार बार चलते हैं, कुछ ऐसे गाने जो बार बार नहीं चलते हैं। वैसे 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे किशोर कुमार का असली नाम था आभास कुमार गांगुली। वे सिर्फ एक गायक नहीं थे बल्कि अभिनय, कॉमेडी, निर्देशक और साथ में संगीत की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान उन्होंने बनाया। साथ में उनकी जो आवाज़ में ऐसी जादुई मिठास थी ना कि चाहे रोमांस हो, दर्द हो, मस्ती हो या दर्शन, तो बस हर एहसास को उन्होंने पूरी सच्चाई से गाया है और उनका जो अंदाज था ना इतना अलग था कि क्या कहें। आज भी नई पीढ़ी उनके गीतों को उसी प्यार से सुनते हैं जैसे हम आज ये गाने सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, आपकी मांग भी आ रही है। तो बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले गाने का आप मज़ा लीजिए, जानी दुश्मन मूवी का, किशोर दा साथ में अनुराधा पौडवाल जी।

0: RM3 Radio. Radio.
1: जवानी दीवानी रणधीर कपूर जया बच्चन किशोर दा आशा जी बस स्पेशल 1970s 1980s वाले खूबसूरत गाने हम चला रहे हैं आज स्पेशली फॉर द फैंस ऑफ किशोर दा जाने जान ढूंढा फिर रहा ये गाना जाएगा अनीता जी फी कॉम्प्लेक्स से उनके पूरे परिवार के लिए सभी परिवार और फैमिली जो हैं फ्रेंड्स हैं

जहाँ हम यहीं रहने वाले हैं 3 बजे तक, मगर अभी के लिए ये जो 1 घंटा है ना वो लगभग बीत चुका है। 1 बजे के समाचार के बाद हम फिर से ये प्रोग्राम जारी रखेंगे 2 बजे तक, स्वीट स्वीट मेमोरीज ऑफ किशोरदा।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में हम सभी लोगों का स्वागत है। दशकों तक मॉरिशस की आर्थिक वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक विशेष पहुंच, अनुकूल कर व्यवस्था और कम लागत वाले श्रम बल पर आधारित रही, लेकिन अब ये पारंपरिक लाभ धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए विजन 2050 परियोजना के तहत दो ऐसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जा रहा है जो अभी तक मॉरिशस में अपेक्षाकृत कम विकसित हैं। इनमें ब्लू इकोनॉमी, जीवन विज्ञान तथा औषधि उद्योग शामिल हैं। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2050 तक मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का आकार 15.2 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। अटोर्नी जनरल गाविन ग्लोवर ने कहा कि जिगोगोशा मिलिट्री बेस इन ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटोरी बिल आने वाले हफ्तों में ब्रिटेन की संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के बदलाव का मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच शागुस मुद्दे पर चल रही बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गाविन ग्लोवर कल अफ्रीकन फ्लॉक में आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वार्षिक संगोष्ठी के दौरान सवालों का जवाब दे रहे थे। अपने संबोधन में अटोर्नी जनरल ने शागुस मामले का भी उल्लेख किया और कहा कि शागुस मूल के मॉरिशनों की गरिमा को इस ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के केंद्र में रखा जाना चाहिए। गैर सरकारी संगठन एन एंजल की पहल पर शनिवार को आयोजित पुनर्वीकरण दिवस में स्वयंसेवकों, विद्यार्थियों, परिवारों और जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस अभियान के दौरान हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण खोज भी सामने आई। इसमें मिका नामक एक दुर्लभ स्थानिक वृक्ष प्रजाति की पहचान की गई जो मॉरिशस की जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण और देश की प्राकृतिक विरासत को बचाने के प्रयासों को भी रेखांकित करती है। और उर्दू स्पीकिंग यूनियन के नए वर्ष भर आयोजित विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूली तथा महाविद्यालयी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। पुरस्कार वितरण समारोह बुधवार शाम फाकवा के सेंसकोंस्तोते थिएटर में आयोजित किया गया, जहां विभिन्न लेखन और सार्वजनिक भाषण

0: प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उनकी प्रतिबद्धता, प्रतिभा और लगन के लिए पुरस्कृत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश में बात करते हैं भारत के बारे में। भारत में नीट 2026 के बाद मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। मेडिकल काउंसिल कमेटी ने घोषणा की है कि काउंसिलिंग के पहले चरण के लिए पंजीकरण आगामी 5 अगस्त को शुरू होगा। उम्मीदवार अपनी राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर मेडिकल विश्वविद्यालयों का चयन कर सकेंगे। इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए नए नियम भी लागू किए गए हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रही सुन पाएंगे शोक समाचार। युवाओं से दिपिने में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री आनंद नमोल जिन्हें सनातन के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे राज नमोल के घर दिपिने से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशो की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10:30 AM। रुद्बा सिंह कैट्रोबोन में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड के श्री मोहनलाल बंधु जिन्हें देवानंद के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 4 बजे उनके घर बासा कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: ना सफर, हाँ ना सफर।
1: जहाँ ऐसी आवाज़ें सुनकर तो कोई भी गुम हो जाएगा ख्यालों में और सब कुछ भूल जाएगा ही ना। वेलकम बैक टू सुहाना सफ़र प्रोग्राम के दूसरे घंटे में हो चुका है 1:10 और आज है 2nd of August, संडे का दिन है और हमेशा की तरह हम आ जाते हैं लेजी संडे आफ्टरनून शो पर लेकर। और आज लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि वे कह रहे हैं ओ किशोर दा हमें तो माय फेवरेट है जी, मेरा भी है। और हम जानते थे कि आप सब लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे और कभी कभी कुछ ना कुछ हम लेकर आते हैं किसी एक एक्टर या एक्ट्रेस पर आधारित, उनका बर्थडे है या ऐसे ही, बस इस प्रोग्राम को और दिलचस्प बनाने के लिए। तो आज है किशोरदा के 70s 80s वाले गाने जब वे सचमुच हाई स्टैंडर्ड के गायक बने और उनकी आवाज़ जो है ना, उनकी आवाज़ ने सबके मन को रिझा दिया, सबके मन को चुरा लिया। और आज भी ऐसे गाने सुनकर हम कहते हैं वाह, काश हमारे पास आज भी वो जिंदा होते तो कितने गाने गाते। मगर जितने गाने उन्होंने गाए हैं ना, अगर हम चलाना चाहें तो एक प्रोग्राम तो बस नहीं होगा। बस चुनकर लाए हैं कुछ कुछ, एक कुछ आपके पसंद के, कुछ हमारे पसंद के। जो सुहाना सफ़र प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। और कहते हैं ना, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, क्योंकि प्यार का जो है ना, किसी पर किसी का जोर नहीं चलता दिल पर ना प्यार पर। और जब ऐसी ऐसा गाना हम चलाएंगे तो ओब्वियसली याद आ जाएगा हमारे जो सुपरस्टार थे राजेश खन्ना साहब। और राजेश खन्ना साथ में किशोर कुमार की जोड़ी को हिंदी फिल्म संगीत की सबसे सफल जोड़ियों में गिना जाता है। राजेश खन्ना के चेहरे पर जो मुस्कान दिखती थी ना, उसे आवाज़ देते थे किशोर कुमार। उनके जो दर्द उनके चेहरे पर आती थी, उनको आवाज़ देते थे खुद किशोरदा। तो ऐसा लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों, जैसे एक दिल है एक जान है। ऐसे ही हम ये गाना चलाते हैं, किसकी मांग पर ये गाना है। हाँ जी, तो बाबा नटवा जी का ट्रबोन हमेशा के लिए साथ देते हैं, शॉप में ही हैं अभी, तो बोंको आज टू यू। सो ये सभी अनाटवा परिवार के लिए। साथ में शीला है बनमेया की, तो कति पतंग वाला गाना आप सुनना चाहती थी ना, तो ये गाना आपके लिए, सभी माकुना परिवार के लिए। और सभी जो दोस्त हैं हमसे जुड़े हैं अभी अभी, आपको बता देते हैं ये है सुहाना सफ़र प्रोग्राम। 12 बजे से 2 बजे तक स्पेशल किशोरदा और 2 बजे से 3 बजे तक होगा 90s के गाने। मैं हूँ देवीना आप सबों के साथ।

जापाई की नंदा जी, ये रहा आपके लिए फिल्म लावारिस का ये बहुत ही रोमांटिक सा गाना, आशा जी साथ में किशोरदा, और ये गाना जाएगा नंदा जी आपके लिए, साथ में पुनीता है गणेश फैमिली। वैसे आपने साउथर्न वाला जो गाना मांगा है हम चलाएंगे बाद में, अभी के लिए इसको एंजॉय कीजिए।

0: RM3 Radio. Radio.
1: जाकिशोर दा की आवाज में पिक्चराइज्ड ऑन संजय दत्त, साथ में आशा जी की आवाज में पिक्चराइज्ड ऑन जय प्रधा। ये है बहुत ही खूबसूरत सा गाना, मैं आवारा हूँ। और इस फिल्म में के सभी गानों में लगभग किशोर दा ही ने आवाज़ दी थी। और जो हमारे किशोर दा साथ में आशा जी के बेहद ही बड़े फ़ैन हैं, ये हैं मदन डोंश के नवीन जी। ये गाना आपके लिए, आपके सभी परिवार और सभी दोस्तों के लिए। ऐसे ही आशा जी की आवाज़ आप सुनते रहे, साथ में किशोर दा की आवाज़ भी एंजॉय कीजिए। सुहाना सफ़र प्रोग्राम आप सबों के लिए।

क्या आवाज़ है किशोरदा की। जी हाँ, ये गाना स्पेशली कत्र बोन के केश जी आपके लिए, बातों बातों में मूवी का गाना है, बेटियां हैं नेहा और नितिशा के लिए। साथ में मनीता जी आपका मैसेज पढ़ रहे हैं, हम ठीक हैं और आप कह रहे धन्यवाद आपके प्यारे प्रोग्राम के लिए, थैंक यू। तो जो गाना है नहीं चलाएंगे, बस इस गाने में आपका नाम जोड़ते हैं, माँ सुमंती के लिए सभी बहनों, आरती, सचिता, बबीता, रेखा, भाभी उषा, भाई सत्यम, राहुल, यादव, केशा, ऋषभ, ऋतिक, अनिकेत, अक्षय, दीक्षा, शिक्षा, श्लेषा और सेंट जूलियन विलाज। मनीता जी आपके लिए भी।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: जो उदासी वाले दिन ठहरते नहीं हैं, जाएंगे आएंगे, खुशी के दिन भी आते जाते रहेंगे। बस हमें ना अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना है, खुशी हो या गम आगे बढ़ते जाना है और सब कुछ वो करना है जो आपका दिल कहे। सब ऐसे ही प्रोग्राम है सुहाना सफ़र प्रोग्राम, आपको अच्छा लग रहा है, हमें इतनी प्यारी प्यारी सी मैसेजेस आ रही हैं, बहुत ही पॉजिटिव सी मैसेजेस आ रही हैं। अगर निगेटिव भी हो तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम हमारे दिमाग में आता नहीं है, कुछ ऐसे कर जाते हैं कि वो कोई कहेगा कि ठीक नहीं था। कोई बात नहीं, हम ये भी सुनने के लिए बेकरार होते हैं कि आप लोग नई नई जो एडवाइसेस हैं देंगे हमें। बस आशा है कि आज के जो गाने हैं वैसे सिलेक्शन तो बढ़िया है, आपका ही है, आपके मनपसंद गाने हैं, साथ में हमारे जो गाने हैं हम भी इन बिटवीन चला रहे हैं। वैसे ये जो अगला गाना है ब्लैक मेल मूवी का गाना, ये गाना कौन पसंद नहीं करता। ये गाना ओरिजिनल फॉर्म में सभी लोग पसंद करते हैं, गाते भी हैं, बजाते भी हैं, और कुछ गायकों ने इसका जो रीमेक किया है, रिमिक्स किया है, जो भी हो जिस वर्जन में आप सुने ना, ये गाना हमेशा दिल को छू जाता है। तो बस किशोरदा की आवाज़ में पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हाँ, ये प्यार हो तो ऐसा हो वरना ना हो। बस ये जो गाना है ना, ये कटोबोन की प्रेमिला जी, हेलो जी, कॉम्प्लीमेंट्स दे रही हैं, वे कह रही हैं हमारे जो प्रोग्राम है ना और इन्फिनिटी मनोरंजन के, उनके उन्हें बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और वो कहते हैं हमारे सभी और जे सभी जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जो एक साथ काम करते हैं ना, हम आपकी खुशी के लिए ही तो काम करते हैं, अपना अपना स्टाइल होता है मगर एम वही है कि हम आप सबों को खुश करें, आप सब लोग हमारे रेडियो सुने, हमारा साथ दें और हमेशा इम्पेशेंट रहे कि कब हम अपना प्रोग्राम लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द हार्ट कि आप लोग हमें पसंद करते हैं, हमारे प्रोग्राम पसंद करते हैं। तो कटोबोन की प्रेमिला जी कह रही हैं बढ़िया प्रोग्राम, थैंक यू। और बेटी विद्या और साथ में जो दामाद हैं प्रवेश, आज वे अपना वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हे हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, और आशीर्वाद हैं, प्यार है सभी की ओर से। सो ये जाएगा स्पेशली निर्वाण की ओर से, ननद हैं पूजा, विहान, तेशा, दिव्या, देवनारायण परिवार, साथ में बी सौ परिवार, ऑफ कोर्स प्रेमिला जी, और उनकी जो बहन है ना वो विद्या की, वंदना जी, और साथ में लीना, सभी उनको वेडिंग एनिवर्सरी की थे सारी विशेस दे रहे हैं। तो ये गाना आपके लिए, आपका प्यार बरकरार रहे, हैव ए वेरी लविंग लवली लाइफ टुगेदर। और इस गाने में नाम जोड़ते हैं बेल्जियम की हमारी जो प्यारी सी प्रकाशवती जी हैं, वे कह रही हैं संडे ब्लेसिंग्स टू यू, आपको भी, मौसम सुहाना है बेल्जियम में, ओहो सुबह तो 55 डिग्रीज था, ठीक है, तो बढ़िया सिलेक्शन आज यूजर, थैंक यू। और इस गीत को हम आपके नाम करते हैं प्रकाशवती जी, साथ में गुनगुनाइए।

जहाँ दिल को दुआ कीजिएगा, आपकी दुआ हमें चाहिए, आपका आशीर्वाद बनी रहे, हम पर ऐसे ही अच्छे प्रोग्राम लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। और ये जो गाना है ना, किसकी मांग पर है, मनोज सोहन जी, नजीमा सोहन जी उनकी वाइफ हैं, साथ में जितने जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके लिए दुआ मांगते हैं, जितने लोग अकेले हैं, सभी फ्रेंड्स के लिए, सभी के लिए। और मनोज जी, ये उनका कहना है कि किशोरदा के जो गाने हैं ना, उनमें जो लिरिक्स हैं, उनमें जो फीलिंग्स हैं, और किसी गायक में

किशोरदा की आवाज़ में गाने इतनी फरमाइश आए हैं कि नहीं चला पाएंगे सभी, सो इसमें नाम जोड़ते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ रहते हैं ज्ञान बिहारी जी, वाइफ सबिता है, सिस्टर इन लॉ है गीता, संजीव, सुनील, रानी, शीतल और सभी आर एम फ्री लिसनर्स के लिए।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: Parosan. इस फिल्म में नजर आए थे सुनील दत्त साहब, किशोर दास, सैरा बानो और जितने कलाकार थे हास्य मूवी कॉमेडी मूवी परोसन। इस फिल्म में आवाज किशोर दा की सीताजी पॉइंट डे लास गांव से है। ये गाना आपके लिए, सभी परिवार के लिए, सोहाती रामभुजन लक्ष्मण परिवार साथ में। ये गाना होगा यहाँ पर है जो है ना अमृता जी और मौदालबिया की है करुणा अमृता, सभी दोस्तों के लिए।

हाँ जी, परी उषा जी फ्रॉम राजस्थान, ये गाना आपके लिए भी, और कह रहे हैं जो गाना था जो हमने किया तुमसे रेडियो मनोरंजन, और जिसे प्यार इसे कहते हैं, जब मैं छोटी थी ये मूवी देखी थी, शादी पे चलाते थे पहले, हाँ जी बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में। तो बस परी उषा जी उस ज़माने में चलते हैं, परोसन वाला।

0: RM3 Radio. Radio.
1: संध्या जोसेफ पे ये गाना आपके लिए ओ यारा तू प्यारों से प्यारा फिल्म है काश जैकी श्रॉफ दीपक उपाध्याय और ये गाना सभी किशोरदा के फैंस के लिए और 2 बजे के बाद हम सुनने वाले हैं आपके कुछ पसंद के गाने साथ में स्पेशली जूही चावला ब्यूटीफुल जूही चावला पर पिक्चराइज कुछ गाने 3 बजे तक

0: RM3 Radio. Radio.
1: जाकी शोरदा के साथ हमारा जो दो घंटों का सफ़र है वो पूरा होने वाला है। दुबई जी आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। इसके बाद हम 90s वाले गाने, स्पेशली जूही चावला, एक्ट्रेस जूही चावला पर पिक्चर है, ऐसे दो गाने हम चलाएंगे। और ये जो गाना है ना, रेहाना जी आदाब आपको, ये गाना आपके लिए एक रास्ता है ज़िंदगी, सकुन जी के लिए साथ में जो मला फाउंडर और सुरेखा है।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। मॉरिशस के खेल इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। रिशोसनी के 28 वर्ष बाद मॉरिशस ने राष्ट्रमंडल खेलों में एक बार फिर स्वर्ण पदक हासिल किया है। ग्लासगो में आयोजित प्रतियोगिता में 90 किलोग्राम से कम वर्ग के जूडो खिलाड़ी रेमी फेये ने स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उनकी ये ऐतिहासिक जीत मॉरिशस के खेल इतिहास में लंबे समय तक याद रखी जाएगी। अब बात पुनः उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले सेकेंड हैंड कपड़ों की करती हैं। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच इन कपड़ों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए तमागे में हाल ही में ओपन हाउस नामक एक बुटीक शुरू किया गया, जहाँ सेकेंड हैंड कपड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। गैर सरकारी संगठन एनेंजल की पहल पर शनिवार को आयोजित पुनर्वनीकरण दिवस में स्वयं सेवकों, विद्यार्थियों, परिवारों और जूनियर चेंबर इंटरनेशनल के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस अभियान के दौरान हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण खोज भी सामने आई। इसमें मेकाक नामक एक दुर्लभ स्थानिक वृक्ष प्रजाति की पहचान की गई, जो मॉरिशस की जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण और देश की प्राकृतिक विरासत को बचाने के प्रयासों को भी रेखांकित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें हम रूस के बारे में। रूस की राजधानी मॉस्को के एक रेस्टोरेंट में हुए विस्फोट में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 21 अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार ये विस्फोट एक महिला के पास मौजूद एक घर में बनाए गए बम के कारण हुआ। पुलिस के मुताबिक ये घटना मॉस्को के कुंड्रिस्काया स्थित स्टॉकिन काल के साथ प्रसिद्ध स्काईस्क्रेपर्स में से एक के भूतल पर स्थित बाल्जी रोसी रेस्टोरेंट के पास हुई। मामले की जांच अभी जारी है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। साथ रहिए, सुन पाएंगे श्रोक समाचार। नवाब स्ट्रीट प्लेनवेयर में नवाब स्ट्रीट मौलाना अब्दुल रशीद नवाब स्ट्रीट प्लेनवेयर में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की बीबी निसान अब्दुल पैदाशम कादर इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज 2:30 बजे इनके घर मौलाना अब्दुल रशीद नवाब स्ट्रीट प्लेनवेयर से उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 2:30 PM।

0: बनवेन रोड कोचिमलितिया में, बनवेन रोड कोचिमलितिया में 92 साल की, 92 ईयर्स ओल्ड की बीबी रकीबा गुबर्धन, बीबी रकीबा गुबर्धन पैदाश्रम भगन और जिन्हें रकीबा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा 1:30 बजे इनके दामाद मस्जब मोहम्मद के मकान कोचिमलितिया से उठाया गया और दफनाने के लिए अमोगी का कब्रिस्तान ले जाया गया। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM कानो कानन स्ट्रीट जमालक वाकवा में, कानो कानिन स्ट्रीट जमालक वाकवा में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के जनाब मोहम्मद सिद्दीक कुदाबुकस, जनाब मोहम्मद सिद्दीक कुदाबुकस जिन्हें सिद्दीक के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज शाम 3 बजे इनके मकान वाकवा से उठाकर सबसे पहले नवाज़े जनाजा के लिए मस्जिद अंजुमन लकावेन वाकवा ले जाया जाएगी, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

जी हाँ, हो चुका है और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर 2:11। हमारे तीसरे घंटे में आप सबों का दिल से वंस अगेन स्वागत है, वेलकम है। देविना है आपके संग माइक पर 3 बजे तक। 12 बजे से लेकर अभी तक आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, दिल से शुक्रिया। एंड ऑलवेज बी कनेक्टेड टू आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन। वैसे मुस्कुराहटों से भरी इस खूबसूरत दोपहर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज का यह सफ़र, हमने कहा था ना, हम उस अभिनेत्री को याद कर रहे हैं, उनकी गाने को हम चलाएंगे, स्पेशली जिनकी प्यारी सी मुस्कान, चुलबुला अंदाज और बेहतरीन अभिनय ने लाखों दिलों को अपना दीवाना बना लिया। कितनी प्यारी सी मुस्कान है, कितनी प्यारी सी सूरत है जूही चावला की। वैसे जूही चावला केवल एक सफल अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि सादगी, पॉजिटिवनेस और ज़िंदगी को खुलकर जीने की मिसाल भी है। 1984 में मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे 80s और 90s के दशक में जूही चावला ने एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्में दी, चाहे कयामत से कयामक हो जो उनका डेब्यू फिल्म था, उसमें मासूम रश्मि हो, या हम है राही प्यार के की शरारती वैजयंती, डर, यस बॉस, इश्क, बोल रदा बोल, या फिर राजू बन गया जेंटलमैन, डुप्लीकेट, हर किरदार में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी सबसे बड़ी खासियत रही उनकी स्वाभाविक अदाकारी, नेचुरल एक्टिंग और दिल जीत लेने वाली मुस्कान। कितनी मासूम सी लगती है ना। आमिर खान, शाहरुख खान, ऋषि कपूर, सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा आदि जैसे सितारों के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों ने खूब पसंद की। तो आइए आज के सुनहरे सफ़र में जूही चावला की यादगार फिल्मों के मधुर गीतों के साथ बिताते हैं कुछ हसीन पल। सुहाना सफ़र प्रोग्राम आपके साथ 3 बजे तक, देविना है आपके संग। सो चलते हैं अगले गाने की ओर। इस फिल्म के लिए हम हैं राही प्यार के, इसमें जूही चावला जी को अवार्ड मिला था। तो कुमार सानू साहब साथ में अकयागनिक।

0: ये गाना ओ प्रिया प्रिया फ्रॉम द मूवी दरा दैट वाज फॉर यू चंदनी पुरुषोत्तम ऑफ ब्रिटानिया। जो हम चला रहे हैं आज स्पेशल जो है जूही चावला पर पिक्चर आए से दुगाने में से जूही चावला का नाम लेते ही चेहरे पर एक प्यारे से मुस्कान अपने आप आ जाती है ना। उनकी जो मासूम अदाएं हैं, चुलबुला स्वभाव और ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें 90s के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। वैसे उनका जन्मदिन जो है ना वो 13 नवंबर को आता है। तो जूही चावला ने 1984 में जब मिस इंडिया का ताज अपने नाम किया तो इसके बाद उनको जो प्रोड्यूसर है ना मॉडलिंग में उनको मौका मिला जाने का, साथ ही प्रोड्यूसर्स ने उन्हें देखा और उनको फिल्मों में आने के लिए उन्होंने उनसे बात की। तो इसके बाद जो था आप जानते ही हैं कितनी सक्सेस उनको मिला। तो इस उन्हीं पर बड़ी खूबी से जैसे उन्होंने एक्टिंग किया है सभी लोग उनको पसंद करते हैं और जब वो हंसती है ना तो कयामत ढा जाती है। तो बस ऐसे ही कुछ गाने हम आपके नाम कर रहे हैं यहाँ पर सुहाना सफ़र प्रोग्राम में। अभी के लिए ये जो गाना है इश्क हुआ कैसे हुआ, जी हाँ फ्रॉम द मूवी इश्क, आमिर खान के साथ दिखी थी, जूही चावला साथ में थे, अजय देवगन और काजोल। उदित नारायण साथ में विभा शर्मा।
1: कह दो ना
2: क्या
1: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है।
2: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
2: I love you।

ना जाए इस मूवी का गाना अजय देवगन साथ में जूही चावला दिखे थे। अब अगला गाना जो है डर, इसमें नजर आए थे जूही चावला के साथ किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान, साथ में थे हमारे जो है सनी पाजी। और इस फिल्म में सभी गाने जो हैं सुपर डुपर हिट हुए, साथ में जो उनका किरदार था ना किरण वाला, लोगों को बहुत पसंद आया। सो जिस ऑब्सेशन पर आधारित ये फिल्म और जो गाना हम चलाने वाले हैं यहाँ पर ना, उदित नारायण साहब साथ में लता जी, और इस गाने में कितनी खूबसूरत दिखी थी जूही चावला। तीन बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा, सुहाना सफर प्रोग्राम और एम फ्री रेडियो।

जशोदाओ जा दोस्तों, कुछ समय में 3 बजने वाले हैं और आप सुन पाएंगे ऐसा भी होता है आज प्रताप सिंह से। आपका साथ रहा, आपने इतनी खुशी से हमारा साथ दिया। आपके मैसेजेस, आपके प्यार के लिए, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए नाइस संडे इवनिंग, साथ में हैव ए हैप्पी वीकडे। सो आपका जो वीक है, आने वाला वीक है, अच्छी तरह से बीते। फिर मिलते हैं। लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अर्शिता के साथ। आपको नमस्कार अर्शिता।
1: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सब लोगों का स्वागत है। श्रावण मास की पावन अवसर पर मॉरिशस में विभिन्न हिंदू संगठनों और मंदिरों द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की आराधना, अभिषेक और वैदिक परंपराओं का विशेष महत्व माना जाता है। बात कुछ अलग करती हैं। प्रणवेयत्त की एक पुरानी ऑपरेट संस्था पर अब पर्दा गिर गया है। बिस्मिल्ला जो शहर के आखिरी बचे हुए पारंपरिक होटल में से एक था, भवन मालिक की ओर से दायर मामले के बाद न्यायालय के आदेश पर बंद कर दिया गया है। लगभग 6 दशकों तक लोगों की यादों से जुड़ा ये स्थान अब इतिहास का हिस्सा बन गया है। इस पर हम ज्यादा जानकारी हमारे अन्य बुलेटिनों के दौरान आएंगे लेकर आएंगे। एक बहुप्रतीक्षित डॉक्यूमेंटरी लुजिसे दो पेपल इस सप्ताह दर्शकों के लिए प्रस्तुत की गई। इस फिल्म के माध्यम से दर्शकों को शागो समुदाय के इतिहास, संघर्ष और उनकी नियति पर आधारित एक महत्वपूर्ण कृति देखने का अवसर मिला। मॉरिशस दौरे पर आए इस डॉक्यूमेंटरी के निर्देशक सिल्वे नायडू ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत, इसके निर्माण की यात्रा और पर्दे के पीछे की कहानी के बारे में जानकारी दी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला महामारी चिंताजनक गति से फैल रही है। शुरुआत में कुछ क्षेत्रों तक सीमित ये संक्रमण अब देश के पूर्वी हिस्से के कई प्रांतों में पहुंच चुका है। इन इलाकों में लोग पहले से ही संघर्ष, जबरन विस्थापन और गंभीर खाद्य संकट जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार ये स्वास्थ्य संकट अब एक मानवीय संकट का रूप भी ले चुका है। संगठन ने प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आपातकालीन खाद्य सहायता, लॉजिस्टिक सहयोग और परिवहन सेवाओं को मजबूत किया है। इसका उद्देश्य लोगों को संक्रमण नियंत्रण के लिए लागू प्रतिबंधों का पालन करने में सहायता देना और साथ ही दुर्गम क्षेत्रों तक जरूरी राहत सामग्री पहुंचाना है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: ऐसा भी होता है on RM3।
1: कल क्या हुआ था, क्या जो हुआ था वो सही हुआ था, आज क्या हो रहा है, आने वाले कल में क्या होगा कौन जान सकता है, कहां पर जीवन है कहां पर मृत्यु है, किसके मन में क्या है, किसके नियत में क्या है कौन पहचान सकता है। जो आपके मुख के सामने मुस्कुराता है वो ही आपको धोखा देता है, जो गैर है वो अपना बन जाता है, जो अपना है वो गैर बन जाता है, दुनिया में ऐसा भी होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, आप सभी को

आप सिंह का प्यार नमस्कार 94.96.98.2 FM पर ये है रेडियो मनोरंजन अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम ऐसा भी होता है अभी से लेकर शाम के 4 बजे तक वेलकम सुस्वागतम

जापान में सोलो कार बहुत जल्द जापान में एक ऐसी गाड़ी बनने वाली है जो सूर्य की एनर्जी से सोलो एनर्जी से चलेगी और जापान और ऊर्जा से चलने वाली कारों के विकास में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। हालांकि अभी ऐसी कारें पूरी तरह से केवल सूर्य की रोशनी पर नहीं चलती है पर भविष्य में वो बनकर तैयार हो जाएगी। जापानी लोगों का कहना है कि साल 2050 तक ऐसी गाड़ी मार्केट में उपलब्ध होगी एंड दैट कार विल फंक्शन विद सोलो एनर्जी। और सोलो क्या कर सकता है? सोलो कार यह वाहन है जिसमें सोलो पैनल लगे होते हैं कार के छत पर। ये पैनल सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलते हैं और यह बिजली बैटरी चार्ज करती है। कुछ मामलों में कार को सीधे चलाने में भी मदद करती है। इससे बाहरी चार्जिंग की आवश्यकता कुछ हद तक कम हो सकती है। और जहां तक सवाल है सोलो कार की, सो जैसे हमने कहा कि 2050 तक सोलो कार उपलब्ध होगी। सोलो कार के लाभ है ईंधन की बचत, कार्बन उत्सर्जन में कमी, पर्यावरण के लिए बेहतर और बैटरी की क्षमता बढ़ाने में सहायता। चुनौतियां, केवल सूर्य की रोशनी की से पूरी कार चलाना कभी कठिन हो सकता है पर नामुमकिन नहीं। बादल या बारिश में बिजली का उत्पादन कम हो सकता है। सोलर पैनलों से मिलने वाली ऊर्जा सीमित हो सकती है। और भविष्य क्या कहता है? जापान, यूरोप और अन्य देश अधिक शक्तिशाली सोलर पैनल और बेहतर बैटरियों पर काम कर रहे हैं और 2050 तक अमेरिका, जापान में ये गाड़ियाँ उपलब्ध होंगी। यस, फॉर द फर्स्ट टाइम देयर विल बी कार, सोलो कार, यानी कि कुछ ऐसी गाड़ियाँ होंगी जो सोलो एनर्जी से चलेंगी। और हमें तो पता है कि अगर मॉरिशस में ये गाड़ी आएगी तो बहुत से लोग इस गाड़ी को खरीदने की कोशिश तो करेंगे, पर आपको बता दें कि यह गाड़ी बहुत बहुत महंगी होगी। और बेशक धीरे धीरे इसका दाम कम हो सकता है, बट फॉर द टाइम बींग When this car will be in the market, वह गाड़ी बहुत महंगी होगी। और उस गाड़ी में न पेट्रोल न कुछ डालना है, वो केवल सोलो एनर्जी से एक बैटरी है जो चार्ज होता है और गाड़ी जो है आप चला सकते हैं सोलो एनर्जी से। दिन में सोलो एनर्जी अगर आपने सेव किया है तो रात के दौरान बारिश में भी आप उस सोलो एनर्जी का प्रयोग करके गाड़ी को चला सकते हैं। सो दुनिया में ऐसा भी होता है दोस्तों, ऐसा हो रहा है। और जापानी लोगों का कहना है कि साल 2050 में दैट विल बी अ रियलिटी व्हेन पीपल विल ड्राइव कार व्हिच विल रन विद सोलो एनर्जी।

हमने कितनी बार कहा है आज भी कह रहे हैं दिस इज नॉट अ डेडिकेशन शो सो नो रिक्वेस्ट ऑफ सॉन्ग हम कई बार कह चुके हैं पर कुछ लोग सुनते ही नहीं क्या करें एंड अब हम बात करेंगे इस दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट के बारे में यस ये रेस्टोरेंट तो जानते हैं वो जगह जहाँ पर हम भोजन करने जाते हैं परिवार के साथ हम थक जाते हैं किचन में काम करते करते पकाते बर्तन धोते तो एक दिन क्या होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि हम लोग भी जाए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए सो दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट का नाम है वेस्ट लेक रेस्टोरेंट यह हुनान प्रांत के चांगशाई शहर में पाया जाता है यस और इसकी विशेषता ये है कि लगभग 58,000 वर्ग मीटर का रेस्टोरेंट है बैठने की क्षमता है 5,000 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं भोजन कक्ष इसमें दर्जनों बड़े और छोटे डाइनिंग हॉल तथा सैकड़ों निजी कमरे हैं और यहाँ पर लगभग 1,000 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं हुनान शैली के तीखे और स्वादिष्ट चीनी व्यंजनों के अलावा अनेक प्रकार के समुद्री भोजन मांसाहारी और शाकाहारी व्यंजन परोसे जाते हैं सो यहाँ एक साथ हजारों मेहमानों के लिए भोजन आयोजित किया जाता है शादी व्यावसायिक सम्मेलन बड़े पारिवारिक समारोह और सरकारी कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित होते हैं इसका विशाल आकार और बैठने की क्षमता इसे दुनिया के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में शामिल करता है रोचक तथ्य इस रेस्टोरेंट के बारे में यह रेस्टोरेंट का कई फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके विशाल रसोई में एक साथ हजारों लोगों का भोजन तैयार किया जाता है प्रतिदिन यहाँ पर बड़ी संख्या में स्थानीय और विदेशी पर्यटक भोजन करने आते हैं चीन के चांगशाई शहर का वेस्ट लेक रेस्टोरेंट अपने विशाल क्षेत्रफल हजारों लोगों की बैठने की क्षमता और बड़े पैमाने पर भोजन परोसने की व्यवस्था के कारण दुनिया के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में गिना जाता है सो अगर एक दिन आपको मौका मिले वहां पर जाने के लिए तो जाइएगा वेस्ट लेक रेस्टोरेंट और वहां पर भोजन कीजिएगा जी हाँ वहाँ का भोजन स्वादिष्ट तो है पर बहुत महंगा है सो अपने जेब में पैसे भर कर जाइएगा और खूब भोजन कीजिएगा अभी से हम कहते हैं सुरुचि शुभाहार बोनापेची

ये तो सभी लोग जानते हैं कि एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत से ऐसे काम रोबोट्स कर पाते हैं जो इंसान कर नहीं पाते, और एक रोबोट कभी कभी 1,000 लोगों का काम अकेले कर सकता है। और जापान में बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर रोबोट काम करते हैं, जैसे मॉरिशस में वेटर है सो वहाँ पर रोबोट काम करते हैं, बैंक में, ऑफिस में, और बहुत जल्द स्कूल और कॉलेज में भी वहाँ पर रोबोट काम करेंगे। और जो न्यूज़कास्टर होते हैं टीवी पर और रेडियो प्रेजेंटर, वो भी दे विल बी रिप्लेस बाय द रोबोट्स इन द कमिंग ईयर्स। बाप रे बाप। और जब हम रोबोट के बारे में बात करें, सो नाउ आई एम गोइंग टॉक अबाउट सोफिया। सोफिया क्या है? वो एक दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ह्यूमैनॉइड रोबोट में से एक है। इसे हैंसन रोबोटिक्स ने विकसित किया है और इसका उद्देश्य मनुष्यों के साथ बातचीत करना, चेहरे के हाव भाव दिखाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना। एंड लेट मी टेल यू, सोफिया केम टू मॉरिशस ए फ्यू इयर्स अर्लियर एंड लोगों ने उनसे मुलाकात थी, और इसका निर्माण हुआ 14 फरवरी 2016 में, और निर्माता है हैंसन रोबोटिक्स, संस्थापक है डेविड हैंसन। और विशेषता क्या है सोफिया के बारे में? इंसानों की तरह चेहरे की कई भाव, जैसे मुस्कान, आश्चर्य, उदासी, सब दिखाई देती है, और कैमरों और सेंसर की मदद से लोगों के चेहरे पहचान सकती है। कई भाषाओं में

बातचीत कर सकती है सोफिया एआई की सहायता से पक्षों के प्रश्नों के उत्तर दे सकती है और बातचीत कर सकती है सोफिया इज नॉट अ ह्यूमन इट्स अ रोबोट बट शी कैन रिप्लेस अ ह्यूमन बीइंग और 2017 में सऊदी अरेबिया ने सोफिया को मानद होनोररी नागरिकता प्रदान की यह किसी रोबोट को नागरिकता दिए जाने का पहला चर्चित उदाहरण था उपयोग शिक्षा और अनुसंधान में इसका उपयोग किया जा सकता है तकनीकी प्रदर्शन में सम्मेलन और सार्वजनिक कार्यक्रम में एआई और रोबोटिक के प्रचार प्रसार में सोफिया पूरी तरह इंसानों की तरह सोच या महसूस नहीं कर सकती उससे उत्तर पहले से तैयार सामग्री एआई मॉडल और प्रोग्रामिंग पर आधारित होते हैं यह स्वयं निर्णय लेने वाली चेतन कॉन्शियस मशीन नहीं है रोचक तथ्य सोफिया के बारे में सोफिया दुनिया के अनेक देशों में कार्यक्रमों में भाग ले चुकी हैं टीवी और रेडियो प्रोग्रामों में और इसने कई प्रसिद्ध नेताओं वैज्ञानिकों और पत्रकारों के साथ बातचीत भी की है इसे अक्सर भविष्य की रोबोटिक्स और एआई का प्रतीक माना जाता है निष्कर्ष ये है कि सोफिया आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है यह मानव और मानव जैसी बातचीत करे चेहरे के भाव प्रदर्शित कर सकती है लेकिन इसकी क्षमताएं अभी भी प्रोग्रामिंग और एआई सिस्टम तक सीमित है और सोफिया एक ऐसा ह्यूमैनॉइड है जिसके पास सवालों के जवाब है और बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो चुटकियों में वो सॉल्व कर सकती है और बेशक जैसे कि हमने कहा कि वो एक बार मॉरिशस आ चुकी है सोफिया लोग उनसे मिले थे और बहुत खुशी भी हुई थी सो दोस्तों अगर एक दिन आपको भी मौका मिले सोफिया ह्यूमैनॉइड से मिलने के लिए या बातचीत करने के लिए तो जाइएगा ज़रूर और उसे पूछेगा क्या तुम सोफिया तुम मुझसे दोस्ती करोगी और देखिएगा वो क्या जवाब देता है आपको और एक दिन ऐसा भी आएगा दोस्तों इस संसार में जब रोबोट्स विल रिप्लेस ह्यूमन बीइंग जो काम मनुष्य समय लेते हैं काम करने के लिए वो रोबोट्स कम समय में बहुत सारा काम कर सकता है ऐसा भी होता है दोस्तों ऐसा भी होता है ऐसा हो रहा है

दुनिया में अजीबोगरीब किस्म के लोग हैं। कुछ लोग इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि किसी को सुंदर देख नहीं सकते और नेगेटिव कमेंट्स करने लगते हैं। अरे भाई, भगवान ने सभी को सुंदर बनाया है। अगर आप किसी को सुंदर देखकर कॉम्प्लेक्स करें, ये आपकी प्रॉब्लम है। पर भगवान ने सभी को सुंदर बनाया है और आप भी अगर सुंदर बनना चाहते हैं तो सुंदर बन सकते हैं। देयर सो मेनी वेज टू बिकम हैंडसम एंड ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, ऐसा भी होता है। कार्यक्रम 94.96 98.2 FM राइट नाउ लाइव फ्रॉम ओरियन फ्री स्टूडियो, एमबीसी का ओरियन फ्री स्टूडियो, रेडियो मनोरंजन। दोस्तों, अद्भुत सचनी खबरों का प्रोग्राम साप्ताहिक कार्यक्रम है जो चलता है सप्ताह में एक बार, ओनली ऑन संडेज फ्रॉम 3 to 4 PM और जय प्रताप सिंह के साथ। यस, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉन्गेस्ट सर्जरी इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन, दुनिया की सबसे लंबी सर्जरी, 4 दिन तक की सर्जरी चली थी। रिकॉर्ड 4 से 8 फरवरी 1951 के बीच शिकागो अमेरिका ने बनाया था। यहाँ जानकारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दर्ज है। यस, सो वहाँ पर एक व्यक्ति के ऑपरेशन की गई थी शिकागो अमेरिका में, एंड द ऑपरेशन टुक 4 डेज, 4 दिन का ऑपरेशन। मरीज कौन थी? मरीज का नाम था जर्ट्रूड लेवांडोव्स्की। उन्हें ओवरी यानी कि अंडाशय में एक बहुत बड़ी ओवेरियन सिस्ट थी, जिसे निकालने के लिए यह लंबी सर्जरी करनी पड़ी। और सर्जरी इतनी लंबी क्यों चली? सर्जरी का आकार असामान्य रूप से बड़ा था, ऑपरेशन बहुत जटिल था और डॉक्टरों को अत्यंत सावधानी से काम करना पड़ा। मरीज की जान बचाने के लिए पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया गया। ऑपरेशन लगातार 96 घंटे तक चला। इस दौरान डॉक्टरों, नर्सों, अन्य चिकित्सा कर्मचारियों की टीमें बारी बारी से काम कर रही थी। नॉन स्टॉप ऑपरेशन फॉर 4 डेज, कैन यू इमेजिन। और सर्जरी के दौरान मरीज का वजन लगभग 280 किलोग्राम से घटकर 140 किलोग्राम रह गया, क्योंकि बहुत बड़ी सिस्ट को शरीर से निकाला जा रहा था। इस ऑपरेशन का रोचक तथ्य ये है कि आधुनिक चिकित्सा में इतनी लंबी सर्जरी बहुत दुर्लभ होती है। आज की बेहतर तकनीकी और उपकरणों की मदद से कई जटिल ऑपरेशन पहले की तुलना में कम समय पूरे हो जाते हैं। सो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में इस ऑपरेशन के बारे में लिखा गया है, एंड दैट ऑपरेशन टुक 4 डेज। दैट ऑपरेशन वॉज डन इन शिकागो अमरीका। सो दोस्तों, दुनिया में ऐसा भी होता है कभी कभी किसी व्यक्ति की जान बचाने के

ये अगर 10 दिन भी लग जाए या 1 महीने भी लग जाए तो डॉक्टर जो है ऐसा काम करते हैं अपने मरीज की जान बचाने के लिए और कहते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं और यहाँ पर आपने सुना किस प्रकार 4 दिन तक नॉन स्टॉप डॉक्टर नर्स लोग ऑपरेशन रूम में अंदर आते हैं जाते हैं और उस पेशेंट के ऑपरेशन करते हैं एंड लेट मी टेल यू दैट ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल 4 दिन का ऑपरेशन नॉन स्टॉप ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल और उस व्यक्ति की जान बच गई थैंक यू डॉक्टर वालू डॉक्टर को हमारा सलाम है क्योंकि डॉक्टर लोग अगर नहीं हैं जो लोगों की जान जा सकती है तो डॉक्टर्स आर द राइट पर्सन टू सेव लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स थैंक यू डॉक्टर्स इन मॉरिशस एंड डॉक्टर्स अराउंड द होल वर्ल्ड

आप में से बहुत से लोगों को मिर्ची अच्छी लगती है खाने के लिए। हाँ, मिर्ची का इस्तेमाल होता है चटनी में, करी में, सलाद में। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची का नाम क्या है? यस, इस दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची का नाम है पेपर एक्स। यस, वर्तमान में पेपर एक्स को दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची माना जाता है। इसे अक्टूबर 2023 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक रूप से दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची घोषित किया है और इसकी औसत तीक्ष्णता 2693 स्कॉलिंग हिट यूनिट SHU मापी गई है। और अमेरिका मिर्च विशेषज्ञ एड करी ने विकसित किया है और इसे तैयार करने में लगभग 10 वर्ष का समय लगा है। इससे पहले कैरोलिना रीपर दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची मानी जाती थी। फिर स्कोविल क्या है? स्कोविल हिट यूनिट मिर्च की तीक्ष्णता मापने का पैमाना है। और शिमला मिर्च है 0 SHU। जेलीपिनो 2500 से 8000 SHU। कैरोलिना रीपर है लगभग 1.64 मिलियन SHU और पेपर एक्स है 2.693 मिलियन SHU। और पेपर एक्स मिर्ची इतनी तीखी क्यों है? उनका टेस्ट इतना ऐसा क्यों है? इसमें कैप्साइसिन नामक प्राकृतिक रसायन की मात्रा बहुत अधिक होती है। यही पदार्थ मिर्च खाने पर जलन का एहसास कराता है। रोचक तथ्य इस मिर्ची के बारे में ये है कि पेपर एक्स का स्वाद पहले थोड़ा फल जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में इसकी तीव्र जलन शुरू हो जाती है। इसे बहुत कम मात्रा में ही सांस और विशेष खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है। और पेपर एक्स वर्तमान में दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची मानी जाती है। और बेशक यह मिर्ची बहुत बहुत बहुत तीखी होती है। यह सब लोग मिर्ची खाते हैं, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, पर इस पेपर एक्स को खाना, माय गॉड, मैं आई विल नेवर ट्राई इट। आई एम गोइंग टू टेल यू, आई स्वेयर, मैं कभी इस मिर्ची को ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मिर्ची उतने पसंद नहीं है। परहैप्स यू लाइक इट, यस, बट बहुत जलन होती है। यस, सो याद रखिएगा, अगर आप एक दिन कहीं किसी क्वीज में जा रहे हैं, कहीं पर कोई क्वीज चल रहा है, प्रश्न उत्तर हो रहा है और किसी ने आपसे पूछा, टेल मी द इस दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची का नाम क्या है, सो डू टेल देम इस दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची का नाम है पेपर एक्स। यूट्यूब पर जाएँ, टाइप करें PEPPER स्पेस एक्स, तो आप देख पाएंगे यह मिर्ची किस प्रकार से है और कैसे ये तीखी होती है। दुनिया में ऐसा भी होता है दोस्तों, ऐसा भी होता है।

अपने से लोगों को बता देते हैं दिस इज नॉट ए डेडिकेशन शो. जितने लोग मुझे टिकटॉक पर देख रहे हैं थैंक यू मुझे देखने के लिए और बार बार आप डेडिकेशन करें नो

थैंक यू फॉर योर कॉम्प्रिहेंशन। अब हम बात करेंगे बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। इसके बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर बहुत सारे लोगों ने पुस्तकें लिखी है और बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। सो आखिर राज की बात क्या है, क्यों कोई भी जहाज़ अगर बर्मुडा ट्रायंगल की ओर जाता है तो वहाँ से वह वापस नहीं लौटता है, क्या है वहाँ पर भूत प्रेत है, पिशाची नहीं है, क्या है? सो बर्मुडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसका आकार लगभग त्रिकोण जैसा माना जाता है, जिसमें तीन कोने हैं। एक है मियामी, दूसरा है बर्मुडा और तीसरा है सान जुआन। यह क्षेत्र लगभग 5 लाख से 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला माना जाता है। और यह रहस्यमय क्यों बना हुआ है? कई वर्षों से ऐसी कहानियां प्रचलित हैं कि इस क्षेत्र में कुछ जहाज और विमान बिना स्पष्ट कारण के लापता हो गए। इन्हीं घटनाओं के कारण इसे रहस्यमय त्रिकोण कहा जाता है, द बर्मुडा ट्रायंगल। 1945 में अमरीकी नौसेना के 5 विमान, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता है, प्रशिक्षण उड़ान के दौरान लापता हो गया। उन्हें खोजने गया एक बचाव विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया वहाँ पर। इस घटना ने बर्मुडा ट्रायंगल को विश्व भर में प्रसिद्ध बना दिया। वैज्ञानिक क्या सोचते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में? अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ कोई अलौकिक शक्ति होने का प्रमाण तो नहीं मिला है। संभावित कारणों में शामिल है अचानक आने वाले शक्तिशाली तूफान और खराब मौसम, समुद्र की तेज धाराएं जैसे गल्फ स्ट्रीम, मानवीय भूल, ह्यूमन एरर, नौवहन नेविगेशन की गलतियां, या कभी कभी कंपास में स्थानीय चुंबकीय विचलन। और एलियन समुद्री राक्षस या अटलांटिक जैसे कहानियां लोकप्रिय है, लेकिन इसमें समर्थन में कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में राक्षस है, भूत है, पिशाचिनी है, बट साइंटिस्ट लोग इस बात को नहीं मानते हैं। ऑलराइट, क्या आज भी यह खतरनाक है? आज आधुनिक जीपीएस, मौसम पूर्वानुमान और उन्नत नेविगेशन तकनीक के कारण इस क्षेत्र के प्रतिदिन अनेक जहाज और विमान सुरक्षित गुजरते हैं। दुर्घटनाएं होती है, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इनकी संख्या इस क्षेत्र में असामान्य रूप से अधिक सिद्ध नहीं हुई है। निष्कर्ष कर सकते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे चर्चित रहस्यों में से एक है। जी हाँ, और इसकी रहस्यमयी छवि मुख्यतः पुराने हादसों और लोकप्रिय कहानियों के कारण बनी, जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार अधिकांश घटनाओं को प्राकृतिक परिस्थितियों और मानवीय त्रुटियों से समझाया जा सकता है। आई विल एडवाइज एवरीबॉडी नॉट टू गो देयर। बर्मुडा ट्रायंगल क्यों जाएं भैया, जहाँ जाकर आप लापता हो जाए? नो, हम आपको खोना नहीं चाहते। वी लव यू सो मच। हमारे इतने प्यारे प्यारे ऑडियंस, हमारे लिसनर्स जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, आई डोंट वांट टू लूज यू, वी ऑल फैमिली, एमबीसी का फैमिली है हम। सो वहाँ जाइएगा मत। हाँ, बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में जानना चाहते हैं, यूट्यूब पर टाइप कीजिए द मिस्ट्री ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल, टाइप कीजिए BERMUDA, लीव ए स्पेस ट्रायंगल, TRIA।

गिला गिला गिला दिल गिरा गिरा जहाँ भी तो चाहते हैं कि बस हम यहीं गाते रहे गुनगुनाते पर समय का तकाजा है जाना तो पड़ेगा क्योंकि चार बजने वाली है और द शो कम्स टू एन एंड जी हाँ ऐसा भी होता है कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होने जा रहे हैं चार बजे का फ्लैश न्यूज के बाद डॉक्टर पूनम से आप सुनेंगे प्रोग्राम फिल्मी गजलें हमारी ऐप की मुलाकात यहीं तक थी टिकटॉक पर मुझे देखने के लिए और रेडियो पर सुनने के लिए शुक्रिया थैंक्स अ लॉट हमारी आपकी मुलाकात होगी ट्यूसडे की रात को मंगलवार की रात को 9 बजे से 11 बजे तक ऑन एन फ्री रेडियो मनोरंजन NAM2 रेडियो मॉरिशस प्रोग्राम का भोजपुरी तड़का तब तक हमें इजाजत दीजिए और जी प्रताप सिंह सितालू की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते बॉन वीकेंड बाय बाय

0: शाम के 4 बज रहे हैं। सुनते समाचार आष्टा के साथ नमस्कार।
1: नमस्कार संजय, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। पुनः उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले सेकंड हैंड कपड़ों की बात करती हैं। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच इन कपड़ों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए तमाघा में हाल ही में ओपन हाउस नामक एक बुटीक शुरू किया गया, जहाँ सेकंड हैंड कपड़े उपलब्ध कराई जाती है। गैर सरकारी संगठन एन एंजल की पहल पर शनिवार को आयोजित पुनर्वनीकरण दिवस में स्वयं सेवकों, विद्यार्थियों, परिवारों और जूनियर चेंबर इंटरनेशनल के सदस्यों ने भाग लिया। इस अभियान के दौरान हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण खोज भी सामने आई। इसमें मैकाक नामक एक दुर्लभ स्थानिक वृक्ष प्रजाति की पहचान की गई, जो मॉरिशस की जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण और देश की प्राकृतिक विरासत को बचाने के प्रयासों को भी रेखांकित करती है। मॉरिशस के खेल इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय शुरू हो गया है। रिशा सुनी के 28 वर्ष बाद मॉरिशस ने राष्ट्रमंडल खेलों में एक बार फिर स्वर्ण पदक हासिल किया है। ग्लासगो में आयोजित प्रतियोगिता में 90 किलोग्राम से कम भार वर्ग के जूडो खिलाड़ी रेमी फेये ने स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उनकी ये ऐतिहासिक जीत मॉरिशस के खेल इतिहास में लंबे समय तक याद रखी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में नीट 2026 के बाद मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने घोषणा की है कि काउंसलिंग के पहले चरण के लिए पंजीकरण आगामी 5 अगस्त को शुरू होगा। उम्मीदवार अपनी राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर मेडिकल विश्वविद्यालयों का चयन कर सकेंगे। इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए नए नियम भी लागू किए गए हैं। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।

0: 4:08 हो चुके हैं। नमस्ते, आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दोपहर अब शाम की दहलीज पर है और ऐसे ही वक्त में कुछ अल्फाज, कुछ गज़लें और कुछ खूबसूरत एहसास दिल को सुकून दे जाते हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम, आइए सजाते हैं फिल्मी गज़लों की महफिल सिर्फ RM3 रेडियो मनोरंजन पर।
1: RM3 रेडियो

0: नजर।
1: 4:14 हुए हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ। मुझसे पहले आपका साथ निभा रहे थे प्रताप जी, जो कि बहुत ही प्यारा प्रोग्राम करते हैं, मुझे बहुत ही पसंद है। और अब आप जुड़े हुए हैं अपने ही इस प्रोग्राम के साथ, यानी कि फिल्मी गज़लों के साथ। फिल्मी गज़लों में हम बात करते हैं उन शायरों की, उन शायरा की, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा। और जब लिखते गए तो कहते हैं कि इतना कुछ लिखने के बाद भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने लिखा। उन्होंने हमेशा यही कहा कि शायद मौसम बहुत अच्छा रहा होगा, शायद मेरी सोच बहुत अच्छी रही होगी, शायद हमने कभी झुकना सीख लिया होगा, और इसीलिए ऐसी ऐसी चीज़ें हमसे निकलती चली गई। और सच बात है, शायर जब भी लिखता है बहुत खूब लिखता है, और जब जब लिखता है तो कहते हैं कि बहुत दुनिया उसको सुनना चाहती है, उसको पसंद करती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एहसास जो होते हैं सीधा दिल से जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से नहीं कि सिर्फ कह दिया और बात बन गई, पर उससे ज़्यादा उन्होंने पढ़ा होता है। ना जाने कितनी किताबें, हज़ारों किताबें पढ़ने के बाद कहते हैं कि कोई शायर तब पेन उठाता है और लिखता है। जब लिखता है तो ऐसा लिखता है कि शायद जन्मों जन्मों तक जो लिखावट उन्होंने लिखी वो ऐसी बनी रहती है कि आज भी उनकी लिखी हुई बातें हम तक पहुंचती हैं और हम सुनते हैं, उन एहसासों में जीते हैं। तो चलिए, हम शुरू कर चुके हैं इस प्रोग्राम को, पर अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5250620 पर, और बता सकते हैं आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है। और अगर आपकी कोई फरमाइश में कोई ऐसी गज़ल है जो आपको बहुत पसंद है और आप सुनना चाहते हैं, तो मैं यहीं पर हूँ आपके साथ, पूनम।
0: RM3 Radio.

0: गजल।
1: आप जुड़े हैं फिल्मी गजलों के साथ और ये प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शायर की जिनका नाम है इफ्तिकार आरिफ साहब। उनकी शायरी में रिश्तों की गर्माहट, इंतज़ार और यादों की गहराई महसूस होती है। लिखते हैं, एक चेहरा आज भी दिल में उजाला करता है, बिना मिले भी रोज मुझसे बात करता है। फासलों ने जिस रिश्ते को कमज़ोर समझा, वही रिश्ता आज तक मेरा सहारा बनता है। कितनी खूब बात लिखी है, वाह वाह करने का दिल करता है। कुछ लोग साथ हों या ना हो, उनकी मौजूदगी दिल कभी कम होने ही नहीं देता। लगता है कि वो हमारी यादों में एक धड़कन की तरह हो जाते हैं। बस अपनी यादों में चले जाओ और धड़कन जैसे बढ़ जाती है, तेज़ हो जाती है, वैसे ही वो यादें भी तेज़ हो जाती हैं। और जब यादें आती हैं तो उस समय सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है, वो है कोई ना कोई प्यारी सी हल्की फुल्की सी गज़ल। तो आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज़ में बहुत ही सुंदर ये प्यारी सी गज़ल आप सबके लिए।
0: RM3 Radio.

शायर तो बहुत हुए, शायरा भी बहुत हुई, बहुत सारी ऐसी शायरा हैं जिन्होंने बहुत पर्दे के पीछे रह कर लिखा। कभी वो सामने आती तो कहते कि अरे इसने तो कितना कुछ लिखा है, पर कहने कहते कहते कई बार लगता है कि नहीं, मैंने शायद वो नहीं कहा। तभी अतिया खान ने एक ऐसी बात लिखी, कहती हैं, दिल ने तेरी आहट को दुआ की तरह रखा, दिल ने तेरी आहट को दुआ की तरह रखा, हर खुशी में तेरा ही नाम छुपा रखा। तू मिले या ना मिले ये अलग बात है, तू मिले या ना मिले ये अलग बात है, मैंने मोहब्बत को हमेशा वफा की तरह रखा। अतिया खान की शायरी में नरमी, अपनापन और खामोश एहसास बड़ी सादगी से उभरते हैं। और ये तो बात सच्ची है कि मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रूप शायद वही है जहाँ कोई शोर नहीं, सिर्फ

0: एक ऐसे शायर हुए जिनका नाम है फरहत एहसास। फरहत एहसास अपनी गहरी सोच और एहसासों को नरम अल्फाज देने के लिए जाने जाते हैं। उनकी शायरी दिल और जिंदगी के रिश्तों को खूबसूरती से छूती है। लिखते हैं, दिल ने हर दर्द को अपना सफर मान लिया, हर आंसू को चुपचाप असर मान लिया, जो मिला उसे भी मुस्कुरा कर रख लिया, जो बिछड़ गया उसे मुकद्दर मान लिया। जिंदगी हर बार हमारी मर्जी से नहीं चलती, लेकिन दिल की खूबसूरती यही है कि वह हमेशा टूट कर भी मोहब्बत करना भूलता नहीं, और कभी वो ये नहीं कहता कि मैं टूट गया हूँ। वो ये कहता है, मैं अभी भी उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ।
1: RM3 Radio.
2: वो अभी तक पुल पर खड़ी थी। अतीत से आती हुई हंसी और आवाज बहुत दूर नहीं लगी। ऐसे ही लगा जैसे आवाज अभी तक बीती नहीं। शायद कोहरे में हाथ बढ़ाए तो छू ही ले उसे। घड़ी देखी, सेकंड की सुई अपने पहरे पर परेड कर रही थी, और अभी तक उसके आने की कोई आहट नहीं थी। रात में शगाफ आ गया था, क्रैक आ गया था, आधी रात कट चुकी थी। वो रात भी ऐसी ही कटी थी, 21वीं मंजिल पर एक घूमते हुए रेस्टोरेंट में, शायद टोरंटो में था। वो दो ही थे और घड़ी देखी थी तो उसने अपना हाथ रख दिया था उस पर। कितना बड़ा हाथ था उसका, उसकी दोनों कलाइयां उसमें बंद हो जाया करती थी, लॉक हो जाती थी। अपनी भोजल आंखों से उसने देखा था उसकी तरफ, और उसकी आंखों की आवाज सुनाई दी थी, तुम्हारी आंखों का रंग भी तो आसमानी है।

4:48 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ, और इस समय मैं आपके साथ हूँ पूनम। एक ऐसी शायरा हुई, बहुत नाम रहा उनका, अज़रा अब्बास। अज़रा अब्बास की रचनाओं में जिंदगी, रिश्ते और इंसानी एहसासों की गहराई बहुत ही सहज ढंग से सामने आती है। लिखते हैं, एक रिश्ता खामोशी में पलता रहा, बिना नाम लिए ही चलता रहा। एक रिश्ता खामोशी में पलता रहा, बिना नाम लिए ही चलता रहा। ना शिकवा ना कोई शिकायत रही, बस दिल से दिल तक रास्ता बनता रहा। कहाँ से ये सोच आती है, कहाँ से ये मोहब्बत आती है, कहाँ से ये इतना ज़्यादा गहरा प्रेम नज़र आता है। हर रिश्ता आवाज़ नहीं मांगता, कुछ रिश्ते सिर्फ एहसासों से ही अपनी पूरी कहानी कह देते हैं। और ये सब के पास, हम सब के पास ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं, बस हम अपनी कहानियों को भूल चुके हैं, शायद हमने खुद से भुला दिया। पर इन शायरों ने क्या किया, इन्होंने उसको अपनी कहानी को पन्नों पर लिख दिया। जो उन्होंने लिखा वो आज हमारे बीच है।

0: गजल।
1: 4:54 हो चुके हैं दोस्तों, आज की फिल्मी गजलों की महफिल को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज के अशार, आज के एहसास और आज की गजलें आपके दिल में अपनी एक खास जगह बना गए होंगे। शायरी की यही खूबसूरती है कि महफिल ख़त्म हो जाती है लेकिन उसके अल्फाज देर तक साथ चलते रहते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं थी आपके साथ पूनम। नमस्ते, आदाब, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मेरे बाद आप सुन पाएंगे शीतल जी के कार्यक्रम को, यानी कि यादों को। सुनते रहिए RM3 रेडियो मनोरंजन। ये है आपके लिए आखिरी गजल, बहुत ही प्यारी है, जगजीत सिंह की आवाज़ में।
0: RM3 Radio.

0: टाइम चेक शाम के 5 बज रहे हैं.
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: साया जो हर पल हमारे साथ रहता है, एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है, पर जो हमेशा

0: दामन पकड़ी रहती हैं वो हैं यादें।
1: विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही महान कलाकार, एक बहुत ही जाने माने कलाकार रहे, जिनका नाम हिंदी इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। आज हमारे बीच नहीं रहे, इनके अदाकारी से, इन पर फिल्माए गए गीतों से उन्हें हम आज भी याद करते हैं।

70 का दौर विनोद खन्ना का सबसे अहम दौर रहा, जहां वे सफलता के शिखर तक पहुंच चुके थे। एक ऐसा दौर जहां हर कोई विनोद खन्ना के दीवाने हो गए थे, उनके अदाकारी से, उनके पर्सनालिटी से। विनोद खन्ना के अनगिनत सुपरहिट फिल्मों में से एक अमर अकबर एंथनी, जो कि आज भी लोगों को बेहद ही प्रभावित करता है। मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म रही। विनोद खन्ना ने इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया और उनके बगल में द ग्रेट अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, ये खूबियां रही इन तीन महान कलाकारों का। एक जगह जब ये तीनों अमर अकबर एंथनी हो, फिल्म को सुपरहिट तो होना ही था। टाइटल सॉन्ग अमर अकबर एंथनी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह की जुबानी, जहां द ग्रेट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गाने को लिखा आनंद बख्शी ने।

विनोद खन्ना पर आधारित यादें की इस दूसरी कड़ी में कुछ सदाबहार गाने। 1977 में फिल्म आई थी आपके खातिर, विनोद खन्ना और रेखा इस बतौर लीड एक्टर नजर आए। पप्पी लहरी के खूबसूरत संगीत निर्देशन में एक मेमोरेबल हिट बम्बई।

1981 में ड्रामा बाय चेतन आनंद री इनकॉर्नेशन मूवी रही कुदरत। राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना भी इस फिल्म में मौजूद रहे। ये गाना पिक्चराइज हुआ विनोद खन्ना और हेमा मालिनी पर, प्लेबैक दिए किशोर कुमार और अनिल पिंटो। म्यूजिक कंपोजिशन बाय द ग्रेट आर डी बर्मन।

बॉलीवुड हिस्ट्री में विनोद खन्ना का वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल करियर ब्रेक 1980 का दौर रहा। 1982 में अपने करियर के पीक पर थे। फिर मुकद्दर के सिकंदर के बाद कई हिट फिल्मों के बाद और यहां से एक नया दौर शुरू हुआ स्टारडम टू स्पिरिचुअलिटी विनोद खन्ना का। वो बन गए द फॉलोअर ऑफ ओशो। इस कम्युनिटी के साथ वे पहुंच गए अमेरिका। अपने स्पिरिचुअल जिंदगी पर ज्यादा ध्यान दिया। अपने करियर को, अपने परिवार को, सबको पीछे छोड़ गए।

पांच साल बाद 1987 में आया वापसी का समय। वापसी के बाद भी उनका जादू कायम रहा। विनोद खन्ना ने एक बार फिर हिंदी सिनेमा से जुड़ गए, एक के बाद एक फिल्मों में नजर आने लगे। हालांकि पहले जैसे स्टारडम उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, जो कि वे एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर रहे, हर एक कैरेक्टर को बड़ी आसानी से प्रदर्शित करते गए। 1987 में इंसाफ बतौर लीड एक्टर नजर आए, अपने आप को री एस्टैब्लिश किया। उनके ऑपोजिट डिंपल कपाडिया रही। विनोद खन्ना एक ऐसे एक्टर रहे जो कि अपने दौर के हर एक कलाकार के साथ काम करते आए, हीरो हो या फिर हीरोइन। 1987 के फिल्म सत्यमेव जयते, मीनाक्षी शेषाद्री, अनीता राज, रोमांटिक क्लासिक मूवी जिसके गीत और संगीत से लोग आज भी प्रभावित होते हैं।

विनोद खन्ना एक ऐसे सितारा रहे जिसने अपनी राह खुद चुनी और हमेशा की तरह प्यार करने वालों के दिलों पर छाते गए, प्यार के खूबसूरत फलसफे सिखाते गए। फिल्म आई थी 1977 में परवरिश। अमिताभ बच्चन, शमी कपूर और कई महान कलाकारों के बीच वे इस फिल्म में नजर आए और प्यार के खूबसूरत फलसफे सिखा गए। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गाने को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने।

विनोद खन्ना का फिल्म में सफर अनोखा रहा। खलनायक से नायक, फिर उनकी स्पिरिचुअल जिंदगी जिसका प्रभाव उनके जिंदगी पर, उनके फिल्मी सफर पर पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, आगे बढ़ते गए, हर एक कैरेक्टर में अपने आप को ढालते गए। 1988 में फिल्म आई थी दयावान। फिल्म दयावान में उन्होंने एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर का काम किया। इस फिल्म में उन्होंने कई कैरेक्टर निभाए, समाज से धक्के खाते हुए जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते गए। दिल टूटा गया लेकिन वो टूटे नहीं,

धक्के खाते हुए बन गए एक मजबूत इंसान, बन गए दयावान, गरीबों के लिए काम करता था, गरीबों का सुनता था, द कंपैशनेट, द दयावान, हर एक रंग में अपने आप को फिरो दिया, प्यार के रंग में। ये खासियत रही इस दयावान की, यानी कि विनोद खन्ना की। फिल्म दयावान के बाद विनोद खन्ना एक बार फिर नजर आए माधुरी दीक्षित के साथ। फिल्म थी महासंग्राम। कुछ मौसम बदले, कुछ एहसास बदले, उनके हर एक मुस्कान, हर नजर एक खूबसूरत कहानी सुना जाती थी।

दुनिया वाले भी क्या याद करेंगे, विनोद खन्ना के अजीबोगरीब फिल्मी और जिंदगी की कहानी, जो हो गया सो हो गया। एक बेहद ही खूबसूरत गाना रहा, प्लेबैक दिया कुमार सानू और साधना सरगम ने। एक्शन मूवी जो कि आई थी 1990 में।

नजर आए। इस फिल्म की कहानी के साथ साथ विनोद खन्ना की खूबसूरत अदाकारी के साथ साथ इस फिल्म के गीत और संगीत आज भी लोगों को प्रभावित करता है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं। दो अगस्त 2026 के इस सायंकालीन

समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 28 वर्ष बाद राष्ट्रमंडल खेलों में मॉरिशस ने फिर जीता स्वर्ण। जुडोका रेमी फेये ने रचा इतिहास। विजन 2050 के तहत मॉरिशस वर्ष 2050 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना बढ़ाकर $50 बिलियन तक पहुंचाने की दिशा में अग्रसर है। चागोस मुद्दे पर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच वार्ता जारी। जिगुगोशा विधेयक जल्द ब्रिटिश संसद में होगा पेश। मॉरिशस में जल संकट गहराया। सितंबर से मोगवाक्वा और लानिकोलिया जलाशय सूखने की आशंका। प्रतिबंधों की तैयारी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला का प्रकोप बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय सहायता तेज की है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। मॉरिशस के खेल इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। रिशो सुनी के 28 वर्ष बाद मॉरिशस ने राष्ट्रमंडल खेलों में एक बार फिर स्वर्ण पदक हासिल किया है। ग्लासगो में आयोजित प्रतियोगिता में 90 किलोग्राम से कम भार वर्ग के जुडो खिलाड़ी रेमी फेये ने स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उनकी ये ऐतिहासिक जीत मॉरिशस के खेल इतिहास में लंबे समय तक याद रखी जाएगी। इस पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट।

0: इस पल का कब से इंतजार किया जा रहा था। 28 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद कॉमनवेल्थ खेलों में मॉरिशस की राष्ट्रीय धुन बजाई गई। फाइनल में कनाडियन गियोम गुलह के साथ स्पर्धा में मॉरिशन रेमी फेये ने एक कड़े मुकाबले में अपना दबदबा बनाया रखा। दृढ़ता के साथ उसने ये जीत अपने नाम किया। 33 साल की आयु में रेमी फेये ने मॉरिशस को पहला मेडल दिलाया बॉक्सिंग में। इससे पहले 1998 में क्वालालंपुर में रिशा सैनी ने मुक्केबाजी में मॉरिशस को गोल्ड मेडल जिताया था। मुझे नहीं पता था मॉरिशस को गोल्ड मेडल मिले। 28 साल हुए हैं और भी गर्व होता है। बहुत खुश हूँ। सभी को धन्यवाद।
1: Yes, exactly. Just use it wisely.
0: बर्मिंगम में 2022 में रजत पदक पाने वाले रेमी फेये मॉरिशन जुडोका में अग्रणी होने की अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर चुके हैं। उन्होंने मॉरिशन चौरंगा की शान की रक्षा की और देश के लिए एक नए हीरो बन गए।
2: मॉरिशस डिलीवर्स ए सेकंड एवर गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर हिज कंट्री। Fouillet is about to receive Mauritius's second ever Commonwealth Games gold medal.
0: Judoka mein Mauritian mukkebaz ne na keval jeet hasil ki apitu itihas bhi rach diya.
3: And the celebrations as well.
2: A gold medal to Rémi Fouillet.
4: अन्य खबरों में ग्लासगो में आयोजित पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता में मॉरिशस के लिए एक शानदार शाम रही। नोएमी अल्फोंस ने एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 400 मीटर T54 स्पर्धा में रजत पदक का अपने नाम किया है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद मॉरिशस की इस एथलीट ने शीर्ष स्तर पर अपनी निरंतरता साबित की है। उनकी ये उपलब्धि देश के पैरा खेल क्षेत्र के लिए एक और गौरवपूर्ण क्षण है। यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो मोहवाक्वा और लाग निकोलिया जलाशय सितंबर महीने से सूख सकती हैं। देश में जल की स्थिति को गंभीर बताया जा रहा है। इस बारिश के मौसम में अनुमान से 37% कम वर्षा दर्ज की गई है। आने वाले हफ्तों में जल आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के लिए अधिकारी कई प्रतिबंधों पर काम कर रहे हैं। इनमें सिंचाई, वाहनों की धुलाई और स्विमिंग पूल भरने के लिए पीने योग्य पानी के उपयोग पर

0: रोक जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अलावा पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जल कटौती लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। यचना मिश्रा का विवरण।
1: लानिकोलिया जलाशय 48% भरा है, जबकि एक साल पहले ये 100% भरा हुआ था। देश के उत्तर में आपूर्ति कराने वाले इस जलाशय की स्थिति में जल्द सुधार का कोई संकेत नहीं। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी का मानना है कि यदि स्थिति बनी रही तो सितंबर तक ये जलाशय पूरी तरह सूख सकता है।
2: La situation en ce moment est critique. Marovacois et Nicolier sera à sec septembre et octobre.
1: स्थिति गंभीर है, कुछ नहीं किया गया तो सितंबर अक्टूबर तक मौवाक्वा और निकोलिया सूख जाएंगे। ऋतु विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले महीनों में कम बारिश होगी। एक महीने पहले निकोलिया 72% भरा था और अब वो 48% भरा है, यानी एक महीने में पानी का स्तर 24% से घटा है। 20% मिट्टी का पानी है जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। भूमिगत जलाशयों की भी यही स्थिति है। आने वाले दिनों में जल संसाधनों के संचालन पर कई कदम उठाए जाएंगे। जल भंडार को सुरक्षित रखना और उसे अधिक समय तक उपयोग में लाने पर विचार किया जाना होगा। प्रतिबंध का विचार कर रहे हैं, इससे उत्तर में खेती और घरेलू कामकाज प्रभावित होंगे। गाड़ी धोना, स्विमिंग पूल भरना, ये सब वर्जित होगा। अगले हफ्ते मंत्रालय के साथ बैठक के दौरान हम कदमों पर चर्चा करेंगे जो मंगलवार या बुधवार तक लागू होंगे। जितना अनुमान लगाया गया था इस सर्दी के मौसम में, इस अनुमान का 37% बारिश ही दर्ज हुआ है। देश के सभी बांधों में कुल मिलाकर लगभग 58 मिलियन वर्ग मीटर पानी का भंडार है, जबकि पिछले साल इसी समय ये आंकड़ा लगभग 84 मिलियन था। रविवार दोपहर हुई बारिश से लानिकोलिया के सूखे इलाकों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन जलाशय का स्तर संतोषजनक स्थिति तक पहुंचाने के लिए अभी इससे कहीं अधिक वर्षा की आवश्यकता होगी।
0: दशकों तक मॉरिशस की आर्थिक वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक विशेष पहुंच, अनुकूल कर व्यवस्था और कम लागत वाले प्रबल श्रम बल पर आधारित रही, लेकिन अब ये पारंपरिक लाभ धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए विजन 2050 परियोजना के तहत दो ऐसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जा रहा है जो अभी तक मॉरिशस में अपेक्षाकृत कम विकसित हैं। इनमें ब्लू इकोनॉमी, जीवन विज्ञान तथा औषधि उद्योग शामिल हैं। इस योजना का लक्ष्य 2050 तक मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का आकार 15.2 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। इस पर करुणा लालू का विवरण।
3: मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को दशकों तक सफलता दिलाने वाला विकास मॉडल अब अपनी सीमाओं तक पहुंच चुका है, विजन 2050 परियोजना की एक प्रमुख निष्कर्ष है। पर्यटन, वित्तीय सेवाएं और विनिर्माण उद्योग, जो अब तक अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ रहे हैं, भविष्य की आर्थिक वृद्धि को अकेले आगे नहीं बढ़ा सकते। डॉक्टर विमल ठाकुर ने कहा, अब तक हमारे विकास को बढ़ावा देने वाले कारक नहीं रहे, वे लुप्त हो रहे हैं। गन्ने सेक्टर के लिए रियायती छूट नहीं रही, निश्चित दाम भी नहीं। मल्टीफाइबर संधि के खत्म होने के साथ विनिर्माण सेक्टर की भी यही स्थिति है। हमें नए मॉडल की ओर बढ़ना है जो श्रम शक्ति, टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडेड पर निर्धारित हो। विजन 2050 के अनुसार पर्यटन उन चिन्हित क्षेत्रों में से हैं जिनका मूल्य बढ़ाना होगा। मकसद संख्या के बजाय उच्च गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। अजय झरी कहते हैं, आय बढ़ाई जा सकती है, ये भी देखना होगा कि आने वाले पर्यटकों से सभी का फायदा हो, न केवल बड़े या छोटे होटलों को। आज अन्य किस्म के आश्रय हैं जिससे पर्यटक स्थानीय संस्कृति में भी घुल मिल सकते हैं, इससे पैसे का वितरण संतुलित रूप से हो सकता है। उच्च मूल्य वाली कृषि भी विजन 2050 के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। इसके साथ उन्नत विनिर्माण क्षेत्र को भी खास महत्व दिया गया है। सीमित भूमि पर अधिक उत्पादकता हासिल करना और कृषि उत्पादों को कच्चे रूप में निर्यात के बजाय उनकी प्रोसेसिंग करना है। रक्षा सरजवा ने कहा, उदाहरण के लिए यदि मान्यों को

0: प्रोसेस कर आटा बना सकते हैं और आटे के आयात को घटा सकते हैं, यानी विदेशी मुद्रा की अदायगी भी कम कर रहे हैं। इससे स्थानीय किसानों का भी समर्थन कर रहे हैं। इसमें उपकरण, बिजली, श्रमिक शक्ति, मॉरिशस में इसकी बहुत लागत है, इसलिए हमें समर्थन भी चाहिए। विजन 2050 के अनुसार वर्ष 2050 तक मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का आकार 3 गुना करने के लिए उच्च मूल्य वाली सेवाओं का जीडीपी में योगदान लगभग 40% तक बढ़ाना होगा, जो अभी लगभग 25% है। दो ऐसे क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है जिनमें अपार संभावनाएं हैं, लेकिन मॉरिशस में उनका कम विकास हुआ है। 2050 तक 50 बिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था अभी 15 बिलियन रुपए के करीब है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करना है। ब्लू इकोनॉमी और लाइफ साइंसेज एंड फार्मा, इन सेक्टरों को कैसे समर्थित कर सकें, श्रम शक्ति की किस्म को बढ़ाना ताकि वे अनुकूल ढल सके, मूल ढांचे भी देखने हैं, पानी और बिजली भी, ताकि विकास को ये बाधित न करें। विजन 2050 अब आम जनता की टिप्पणियों के लिए खुला है। लोग शुक्रवार 7 अगस्त तक अपने सुझाव vision2050.gov.mu.org पर प्रस्तुत कर सकते हैं।
1: अटोर्नी जनरल गाविन ग्लोवर ने कहा है कि जिगो गौशा मिलिटरी बेस एंड ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटोरी बिल आने वाले हफ्तों में ब्रिटेन की संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के बदलाव का मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच शागुस मुद्दे पर चल रही बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गाविन ग्लोवर कल फ्लिकॉन्फ्लाक में आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक संगोष्ठी के दौरान शहजाद जुमन के सवालों का जवाब दे रही थी। अपने संबोधन में अटोर्नी जनरल ने शागुस मामले का भी उल्लेख किया और कहा कि शागुस मूल के मोर्शनों की गरिमा को इस ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के केंद्र में रखा जाना चाहिए। विवरण करुणा लालुगा।
0: नए प्रधानमंत्री के बयान से हमें आश्वासन मिला है और हम सोचते हैं कि अच्छी राह पर आगे बढ़ेंगे। FCDO के साथ लगातार संपर्क कर रहा है। स्टॉमर के जाने से पूर्व या बर्नहम के आने के बाद अभी के लिए ये पता चला है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोनाथन पावेल अपने पद पर बने हुए हैं। विदेश मंत्रालय में राउटी भी अपने पद पर हैं, जिनसे मेरा संपर्क कर रहा है। ये अच्छी खबर है और सोचते हैं कि आने वाले हफ्तों में बरतानी संसद में इस बिल के साथ आएंगे।
1: एक बहुप्रतीक्षित डॉक्यूमेंटरी लुजिसे दो पेपल इस सप्ताह दर्शकों के लिए प्रस्तुत की गई। इस फिल्म के माध्यम से दर्शकों को शागो समुदाय के इतिहास, संघर्ष और उनकी नियति पर आधारित एक महत्वपूर्ण कृति देखने का अवसर मिला। मॉरिशस दौरे पर आए इस डॉक्यूमेंटरी के निर्देशक सिल्वा नायडू ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत, इसके निर्माण की यात्रा और पर्दे के पीछे की कहानी के बारे में जानकारी साझा की। और अब रुक करते हैं हम देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से का, जहां स्थित है ले शोंदानी होटल। ये प्रतिष्ठित होटल अगस्त की शुरुआत में अपने अस्तित्व के 35 वर्ष पूरे कर रहा है। इस होटल की खासियत ये है कि इसका निर्माण एक ऐतिहासिक स्थल पर किया गया है, जहां कभी मॉरिशस का पहला समुद्री पर्यटन होटल ले शालों स्थित था। एक अग्रणी पर्यटन प्रतिष्ठान की विरासत को आगे बढ़ाते हुए ले शोंदानी आज भी मॉरिशस के होटल उद्योग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस पर क्लोदे जोफा की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
2: समुद्र तट के पास वाले देश के पहले होटल के अब कुछ बीम्स, कुछ खंडहर और ढेर सारी यादें ही बची हैं। ले शालों की कहानी आज उन लोगों की जुबानी जीवित है जिन्होंने कभी यहाँ काम किया था, जब पर्यटन उद्योग की शुरुआत हो चली थी। प्रेम की तरह आनिक भी उसी जमाने से हैं जिसने मॉरिशस के समुद्र तट के पर्यटन उद्योग की नींव रखी।
3: J'ai beaucoup avancé, la famille, les enfants, j'ai voyagé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès j'ai fait dans la famille avec mon travail ici au Chandran.
2: आज यही अनुभवी लोग अपने ज्ञान और अनुभव को उन युवा पेशेवरों के साथ बांट रहे हैं जिन्होंने होटल उद्योग को अपना कैरियर चुना।
4: J'ai fait la formation PEJ en 2024 et après ça j'ai commencé à

0: la réception, comme c'est pour apprendre.
1: Bonne commencer. Bah, pas qu'un dernier. Aujourd'hui, c'est son animal premier la case. Vous allez dire, la plupart du temps, c'est ici qui m'oblige, c'est qui chez moi.
2: साल दर साल लुशोंगधानी इस क्षेत्र की चुनौतियों को पार कर लोगों को आकर्षित करता चला आया है।
3: Le monde du tourisme connaît certaines difficultés à travers le monde.
2: दुनिया भर में पर्यटन क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। प्रेस और आहिम के आंकड़ों से देखा गया कि मॉरिशस में स्थिति काफी अच्छी है क्योंकि यहां सुरक्षा है, लोग खुश रहते हैं और एकता बरकरार है। ये होटल टिकाऊ विकास की ओर भी बढ़ता गया। 40% कूड़े की रिसाइकलिंग होती है, 100% वाटर वेस्ट की रिसाइकलिंग और प्रांगण की सिंचाई के लिए 6000 लीटर बारिश का पानी जमा किया गया है।
4: श्रावण मास के पावन अवसर पर मॉरिशस में विभिन्न हिंदू संगठनों और मंदिरों द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की आराधना, अभिषेक और साथ ही वैदिक परंपराओं और स्वामी दयानंद के सिद्धांतों का विशेष महत्व माना जाता है तथा वेदों का प्रचार भी किया जाता है। इस पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट।
5: श्रावण मास के शुभारंभ के अवसर पर हिंदू हाउस द्वारा गंगा तालाब स्थित सोमनाथ स्पिरिचुअल मंदिर में विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन

0: Sa mola n'a fait les chavelmas, tout ce qu'il nous fait, nous gagne du. Nous venons faire la prière chive.
1: Hum chavelmas, mais devons que dev, Mahadev que puja karte hain. Aur Swami Dayanand ke teaching par chalte hain.
2: पिछले शुक्रवार को हुए इस समारोह में यजमानों, श्रद्धालुओं और विशेष अतिथियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र जल यात्रा से हुई।

0: तालाब से पवित्र जल एकत्र कर भगवान शिव के 108 शिवलिंगों पर अभिषेक के लिए अर्पित किया।
1: हमारे कर मतलब बहुत बात हो रहा बोला भाग के बाद बाईसन में पच्चीस पे हुई के आज हमने के बहुत भाग के बाद बाजे हमने गंगा जल से आन के शिव पर चढ़ाव थे जा
2: शिवलिंग में पानी गिरा सर और ये रोज के आप सर पानी गिराई फजीर के
1: रोज के सब भगवान के पूजा करो
2: सब।
0: श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण और भक्ति भाव के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की।
3: इस पावन मास में हम सब जानते हैं कि शिव जी ने विष पीकर संसार को बचाया है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं इस महीने मेडिटेशन भजन कीर्तन अभिषेक सारे मंदिरों में किया जाता है। 23 को यहाँ पर एक मुर्गा टेम्पल है जहाँ पर हम कावेदी का आयोजन किया गया है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है जब मुर्गा है तो उनको कावेदी देना पड़ता है, तो यहाँ भी 23 अगस्त को आयोजन किया गया है और हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि इन पूजा में भाग लें और इस पावन महीने का खूब लाभ उठाएं।
0: वहीं मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा त्रियुली स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती वैदिक मंदिर में भी श्रावण मास 2026 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अनुयायियों ने वैदिक यज्ञ प्रवचन और भजन सत्र में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य वैदिक मूल्यों को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना और हिंदू समुदाय में आध्यात्मिक जागृति का प्रसार करना था। वैदिक मंत्रों की गूंज, श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव

0: किया और अपनी परंपराओं से जुड़ने का संदेश दिया।
1: श्रावण
0: मास के दौरान देश में हमारी शाखाओं में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और अगले 7 से 9 अगस्त तक त्रियुलिक इंटरनेशनल कॉलेज में महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है तथा पुनाहुति हम राष्ट्रीय स्तर पर बिलमौर की सनराइज हॉल में करेंगे।
1: सनराइज हॉल बिलमौर।
0: इसके अतिरिक्त श्रावणी महासभा उत्सव के अंतर्गत गहलोत राजपूत महासभा द्वारा पोटली स्थित राजपूत मंदिर में महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने वेदों की शिक्षाओं पर चिंतन किया। यज्ञ और भजनों के आयोजन ने वातावरण को और अधिक पवित्र एवं आध्यात्मिक बना दिया। श्रावण मास के इन आयोजनों ने इस बार फिर मॉरिशस में हिंदू संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों की एकता एवं निरंतरता को दर्शाया है।

0: मुसलमान सेंद्रे में शनिवार 18 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न की गई। भारी संख्या में भक्तों ने भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन किए और रथ खींचकर अपनी आस्था प्रकट की। प्रसिद्ध ब्रिटिश नेपाली पर्वतारोही निर्मल पूर्जा और उनके अभियान के 9 अन्य सदस्य पाकिस्तान में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक पर आए हिमस्खलन की चपेट में आकर मारी गई हैं। और उधर कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला महामारी चिंताजनक गति में फैल रही है। शुरुआत में कुछ क्षेत्रों तक सीमित ये संक्रमण अब देश के पूर्वी हिस्से के कई प्रांतों में पहुंच चुका है। इन इलाकों में लोग पहले से ही संघर्ष, जबरन विस्थापन और गंभीर खाद्य संकट जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार ये स्वास्थ्य संकट अब एक मानवीय संकट का रूप भी ले चुका है। संगठन ने प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आपातकालीन खाद्य सहायता, लॉजिस्टिक सहयोग और परिवहन सेवाओं को मजबूत किया है। इसका उद्देश्य लोगों को संक्रमण नियंत्रण के लिए लागू प्रतिबंधों का पालन करने में सहायता देना और साथ ही दुर्गम क्षेत्रों तक जरूरी राहत सामग्री पहुंचाना है। और रूस की राजधानी मॉस्को में एक रेस्टोरेंट में एक विस्फोट में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 21 अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार ये विस्फोट एक महिला के पास मौजूद एक घर में बनाए गए बम के कारण हुआ। पुलिस के मुताबिक ये घटना मॉस्को के कुनरिस्काया इलाके में स्थित 7 प्रसिद्ध स्काईस्क्रेपर्स में से एक के अंडरग्राउंड पर स्थित इटालियन रेस्टोरेंट बाल्जी रोसी के पास हुई। मामले की जांच जारी है। इस पर तथा अन्य खबरों पर विस्तार इस रिपोर्ट में विधि मासिबुरन के साथ।
1: मॉस्को के एक इतावली रेस्टोरेंट में एक देसी विस्फोट होने से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी समिति ने बताया कि विस्फोटक ले जा रही एक महिला ने रेस्टोरेंट में प्रवेश करने की कोशिश की लेकिन एक सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया। पेरू के दक्षिणी इका क्षेत्र में शनिवार को एक छोटे विमान के खेतों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम 13 लोगों की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी से संकेत मिला है कि पीड़ितों में 11 पर्यटक, पायलट और सह पायलट शामिल थे। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। शनिवार दोपहर इदाओ के ट्विन फॉल्स स्थित एक इन एंड आउट बर्गर रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी में कम से कम 3 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। फुटेज में संदिग्ध बंदूकधारी को एक वाहन पर कई गोलियां चलाते हुए देखा गया जिसके बाद उसे मार गिराया गया। यूरोप के जंगली आग का संकट शनिवार को पश्चिमी यूरोप के अधिकांश हिस्सों में कम हो गया लेकिन इसका सबसे खतरनाक फैलाव ग्रीस की तरफ हो गया। स्पेन में भीषण आग अब आगे नहीं बढ़ रही थी और पुर्तगाल की मुख्य आग नियंत्रण में थी। दक्षिण पूर्वी फ्रांस के वॉक क्षेत्र में एक अन्य जंगल की आग को काबू में करने के लिए लगभग 1500 दमकल कर्मी अभी भी जुटे हुए हैं। असम में लगातार आ रही बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। 11 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री के अनुसार बाढ़ से 2251 गांव प्रभावित हुए हैं और हजारों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शुक्रवार 31

0: जुलाई की रात से शनिवार 1 अगस्त तक केरल में हुई मूसलाधार बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं जैसे भूस्खलन, अचानक बाढ़ और व्यापक तबाही, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में के कारण 8 लोगों की मौत हो गई।
1: अब बढ़ते हैं मौसम के हाल की ओर, करुणा लालू के साथ।
2: पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी तरफ मस्करिंस के दक्षिण में पाए जाने वाले एक काफी जोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर तेज हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि इस बादल घिरे रहेंगे जो रह रहकर घने हो जाएंगे। आज रात और कल सुबह उत्तर, पूरब और सेंट्रल प्लाटू पर जहां तहां बारिश हो सकती है। दिन के दौरान भी आसमान में बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश पूर्व, दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर जारी रह सकती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 3 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने, साथ में पश्चिमी एवं दक्षिणी लगूनों से भी दूर रहने की सलाह दी जाती है। सूर्यास्त 5:52 पर, सूर्योदय 6:38 पर।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का और कंसोल पर हमारी सहयोगी लुडोविक का साथ मिला, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। रॉय रोड क्लूनी में 94 साल लकी 94 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अचामा रामास्वामी, श्रीमती अचामा रामास्वामी पैदाश नाम नागादू और जिन्हें अमम के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे तामलू रामास्वामी के घर क्लूनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। नेहरू रोड ग्रैंड रोड में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड के श्री विनोद मंगरू जिन्हें जैनजिक के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 उनके घर गौनगुतत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। कॉम्बेलिन नंबर दो अंगिता में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री मुखराज नंदू जिन्हें राज के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनकी पत्नी अंतवानेत नंदू के घर अंगिता से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। क्लेमेंशा रोड बेलियर रिवियर सेश में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कृष्णा कुमारी रामनोरिस पैदाशी नाम अकू और जिन्हें सोना मैगजीन के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 उनके बेटे कैलाश रामनोरिस के घर बेलियर रिवियर सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। क्लेफोन नंबर तीन वाकवा में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड की श्री जयप्रकाश गोबिन जिन्हें प्रकाश के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 उनके घर क्लेफोन नंबर तीन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फिरिनो की शमशान भूमि ले जाएगी।

0: और वे पहले वाकवा नगरपालिका में काम करती थी. Cremation tomorrow at 10:30 AM. जुवांस दीपिने में 68 साल की 68 years old की श्री आनंद नमोल जिन्हें सनातन के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे राज नमोल के घर जुवांस दीपिने से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमिशन टुमारो एट 10:30 AM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ.
2: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.

6:33 हुए हैं श्रोताओं नमस्कार आप सबको आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ और एम फ्री रेडियो और आप सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम और मैं उषा कौर यहां पर साथ निभाने के लिए जी हां श्रोताओं आज रविवार 2 अगस्त 2026 और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं रविवार का दिन है छुट्टी का दिन है और लेकिन कुछ लोग अभी काम कर रहे हैं जैसे कि हमारी तरह और आप जुड़े हुए हैं खूबसूरत गानों का इंतज़ार कर रहे हैं और जो हमारा लिस्ट है आप लोगों के नाम हमने बनाया है बस ज़िंदगी मिलके बिताएंगे हाल जो भी है जैसा भी है हम साथ मिलकर बिताएंगे कुछ भावगीत आप लोगों के नाम एंजॉय कीजिए

6:50 होने को है दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम ऑन आरएम फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन। और आप इस समय घर पर हैं, जो भी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपने सुना, गोरों की नकालों की ये दुनिया है, हम सब दिल वालों की है ना। और जो भी गाने हम चला रहे हैं, एक से बढ़कर एक आपके नाम, उषा कौर यहाँ पर आप लोगों का साथ दे रहे हैं। 7 बजे ये कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 7 बजे के बाद भूलिएगा नहीं, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आप सुन पाएंगे।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: रात के 7 बज चुके हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। नमस्कार, आदाब। आप लोग हमें सुन रहे हैं ऑन आरएम फ्री रेडियो। आज रविवार 2 अगस्त 2026 और एक खूबसूरत प्रोग्राम आप लोगों के नाम हम करते हैं दिलों की आवाज प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम आप सुन पाएंगे रात के 9 बजे तक। जी हाँ, अभी से रात के 9 बजे तक साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। नंबर है 4028070। आप हमें कॉल कर सकते हैं और मैसेजेस आप कर सकते हैं ऑन 5250 6200। हमें आपका इंतज़ार है 80s और 90s के खूबसूरत गाने। उषा कौर यहाँ पर हंसते मुस्कुराते हमेशा की तरह। चलिए सुनते हैं आज का पहला गाना।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: सात बजकर बीच 20 मिनट जी हाँ 21 मिनट हुए हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं हमेशा की तरह, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। और दिलों की आवाज़ प्रोग्राम, अगला गाना फिल्म का नाम है संजय। वैसे हमें पता है कि कुछ लोगों का नाम होता है संजय, लेकिन यहाँ पर फिल्म का नाम है संजय और 1992 में रिलीज़ हुई फिल्म हम और तुम, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में हम सुनेंगे अगला गाना। और ये गाना खासकर हम चलाएंगे इंद्रानी जी के लिए, जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम मेबर्ग। गाना खासकर वो मांग रही हैं अपने हस्बैंड देव के लिए और बेटी खुशी। चलिए ये गाना आपके लिए

चलिए नए सोच दिलों की आवाज़ प्रोग्राम हम आप लोगों के लिए चला रहे हैं। धन्यवाद साथ देने के लिए हमेशा की तरह। और यहाँ पर हमें सुन रही है संगीता जी। जी हाँ, आप रहती है बुबासे और इस समय साथ दे रही हैं, और गाना आप मांग रहे हैं फिल्म नज़र के सामने। जी हाँ, ये गाना खासकर आपके भाई के लिए, भाई का नाम है संजीव और आज उनका जन्मदिन है, तो चलिए उनको हम ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं हमेशा की तरह। वो हमेशा खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, और हमारे सभी 90s लवर्स के लिए भी 4028070402807070 और मैसेजेस आप भेज रहे हैं 5250620।

जी हाँ दोस्तों, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इस समय, बहुत धन्यवाद। वैसे आप जानते हैं कि हमेशा की तरह हम लाइव टिकटॉक भी करते हैं,

जहां पर आप सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, खासकर हमारे पेज पर RM Free Radio, Radio मनोरंजन, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। और ये जो अगला गाना है जाएगा पृथ्वी के लिए, जो रहते हैं बुबास है और साथ दे रहे हैं, गाना खासकर उनके नाम और उनके मामा दिव्या के नाम।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 7:52 हुए हैं। वैसे ठंड का मौसम है और बारिश का मौसम है यहाँ पर, हमें सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं लालिनी जी। हाँ, वो रहती है वाक्वा। गाना खासकर वो मांग रही है अपने बेटे के लिए। जी हाँ, बेटे का नाम है अभिषेक और कल उनका जन्मदिन है, तो ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद उनके लिए। जन्मदिन के इस मौके पर और कई लोग हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, आपके नाम जाएगा ये प्यारा सा गाना। हमेशा की तरह आप लोग जुड़े हुए हैं। जी हाँ, रावरम है फ्रॉम साउथ अफ्रीका, रागिनी है एंजल रोजिदा, तनवीर खालिद जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम यूके, और सत्यम भी है, धन्यवाद साथ देने के लिए। रीता देवी नमा, आपको नमस्ते। और विकी साहा जो आज उनका जन्मदिन है, तो पूरे एमबीसी टीम की ओर से वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। रिकॉर्डो है निजाम बहादुर, आपके लिए भी गाना जाएगा। और जाद भी है, हेलो टू यू। तेज सनातन और स्वेनल जो हमें सुन रही है, अंजल रोजिदा, स्वेनल आपका गाना हम चलाएंगे ज़रूर। और अजमेर खान भी है, जिन्नत आपके नाम हम चलाएंगे अगला गाना। और निशागम चरित, गाना वो मांग रही है अपने दोस्तों के लिए फ्रॉम जौदे आना, ओके। और साथ में आयशा भी है जो हमारे साथ जुड़ चुकी है, धन्यवाद। हिमेश आपको भी हम कहते हैं नमस्ते। इंदिरा आपको भी नमस्ते। गुचिना थैंक यू फॉर लिसनिंग। और रेखा रामा रोशनी आपको हम नमस्ते कहते हैं। जिंदा चले धन्यवाद साथ देने के लिए इस खूबसूरत मौसम में, रोमांटिक मौसम में गाना जाता है आप सभी लोगों के नाम।

0: दिलों की आवाज की आवाज की
1: आवाज 8:10 हुए हैं और हम इस कार्यक्रम को जारी रखते हैं धन्यवाद और यहां पर हमें सुन रही है जय नमस्ते आपको निवेद है विमला देवी जी हां आपके लिए भी हम गाना चलाएंगे क्यों नहीं साम फाजा बहुत धन्यवाद आप लोग सुन रहे हैं हिमेश है दासू जात जो है और अमीर आपके लिए भी हम गाना चलाएंगे विनेश कनाय गाना मांग रहे हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए दौलत तरन आपके नाम रेशमा सुराजी आपके लिए भी हम गाना चलाएंगे जी हाँ हुसैन है हाँ नील विनेश कनाय जी हमने बोल दिया आपका नाम माया रामदोस आपके लिए माधुरी जी है नीलिमा आपके लिए भी निजाम होजियर धन्यवाद शामा माहिर अली ऋषि जो है आपके लिए भी गाना जाएगा बहुत धन्यवाद विक्रम गुड आफ्टरनून टू यू और शौमिला चुनीलाल आपके लिए भी गाना हम चलाएंगे कल्याणी सिंह आहाना के लिए भी और साथ में दिवेश बिकिया नमस्कार आपको और तरुण राम आपके नाम हम गाना चलाएंगे 80s और 90s के खूबसूरत गाने 8:05 हुए हैं और साथ ही साथ में सुनील तिलक जो है गाना वो मांग रही हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए भाई श्रावण के लिए भाभी कीर्ति अभिनव कियान नव्या नव्या और तिलक परिवार के लिए वैसे कल श्रावण मास का पहला दिन है आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं लेकिन फिर भी जो गाने आप हमने मांगे हैं हम नहीं चलाएंगे क्योंकि यहाँ जो हमारा प्लेलिस्ट है ऑलरेडी तैयार है और ये जो खूबसूरत गाना है राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज़ों में

दिल को बहुत ही संभाला है हमने, लेकिन क्या करे दिल जो है हाथ से फिसल गया। कुमार सानू की आवाज़ में ये गाना हम सुनने जा रहे हैं और खासकर गुलशन भोला के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं। गाना उनकी मामा प्रभा, बहन दीक्षिता और पूरे भोला फैमिली के लिए और खासकर आरजे हंसिनी के लिए भी ये गाना जाएगा। और साथ में मारिया जो हमें सुन रही है फ्रॉम फ्रांस, राज जो हैं आपके लिए जेविना, थैंक यू सो मच, हलकुरी प्रकाश, निशा गोकुल और विशाल नमस्ते आपको, ललवा प्रदीप गाना मांग रहे हैं ललवा फैमिली के लिए, लिंबू विशाल आपके लिए भी गाना हम चलाएंगे।

0: दिलों की आवाज।
1: आज बजकर 17 मिनट हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर गाना हम चलाएंगे अकेले हम अकेले तुम फिल्म से लिया गया, लेकिन हमें पता है कि अभी हम अकेले नहीं हैं। काफ़ी लोग हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और हमेशा की तरह हम भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, साथ देंगे। आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन के साथ आप जुड़े रहेंगे। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं तबरेज़ खान, आपके लिए गाना जाएगा। विशाल जी, मीका, मनीषा मीका, आपके लिए भी हम गाना चलाएंगे। जी हाँ, आरजे गिनिशा, धन्यवाद आपको। हेलो, कैसी हैं आप? और लीना के लिए राज किशोर दास जी, आपके नाम हम गाना चलाएंगे। और रीना रामादित जो है अपनी बेस्टी रेशमा के लिए गाना मांग रहे हैं। धीरेन प्रसाद, हेलो टू यू। निशा जी, हाँ निशा जो हमें सुन रही है, नमस्ते। गाना वो मांग रही है अपने हस्बैंड कमल और बेटी जो है जानवी। वैसे यहाँ पर हमें मौसम के बारे में बताया जा रहा है कि कटरवोन में ठंड है, वैसे सब जगहों पर ठंड छाया हुआ है। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं हाँ जी, कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, हम इस समय काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, और जो भी लोग काम कर रहे हैं तो हम उनको कहेंगे बॉन कुराज, क्योंकि संडे है। जी हाँ, छुट्टी का दिन है, काफ़ी लोग घर पर है, लेकिन कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो हिम्मत तो चाहिए। और साथ ही साथ में यहाँ पर भदवग बी देसी जो है हमें सुन रहे हैं, नाइस सिलेक्शन। चांदिनी पुरुषोत्तम जी है वो सुन रही है फ्रॉम ब्रिटानिया, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। और अनीता जी भी है। चलिए, अकेले हम अकेले तुम फिल्म से लिया गया, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

8 बजकर 26 मिनट हुए हैं और चलिए अगला गाना राजकिशोर जी गाना मांग रही है अपने बीवी के लिए। जी हाँ, बीवी का नाम तो नहीं बताया आपने, कोई बात नहीं। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं करण। देवी का किस नामा है गाना, वो मांग रही है अपने हस्बैंड कार्तिक और बेटे बेटे कार्तिक और हस्बैंड जो है विशाल। प्रतिमा दुखिताराम आपको भी हम कहते हैं नमस्ते, वैदही नमस्कार आपको। पूजा विशाल बालगोबिन गाना जाएगा आपके नाम। और प्रतिमा दुखिताराम जो है गाना वो मांग रही है अपने भतीजे के लिए कनिष। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है। ढेर सारा प्यार फ्रॉम राम शरण परिवार। और रंभा जी जो है गाना वो मांग रही है पिटिया फैमिली जो रहते हैं विलनुआ। आवी आपके लिए गाना जाएगा। और यहाँ पर हमें सुन रही है हमारा मन भावन शो सुन रहे हैं, धन्यवाद आपको। लेकिन नाम तो नहीं बताया आपने, आप इस समय कपरेस्त्री कर रहे हैं तो चलिए आपको भी हम कहते हैं वो कुहाज। घर पर बैठे बैठे, घर पर रहकर भी कभी कभी हमारे पास इतना सारा काम होता है कि क्या करें, काम तो हमें करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर किशोर दा के सभी फैंस के लिए ये अगला गाना कुदरत फिल्म से लिया गया। हमें तुमसे प्यार है, बहुत प्यार है, ये हम ही नहीं जानते।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 8:31 हुए हैं दोस्तों हम जारी रखते हैं ये प्रोग्राम और वैसे आप आपने आपका नाम भेजा है आप रेणुका है फ्रॉम लंदन चलिए रेणुका जी धन्यवाद आपको आप साथ दे रही है वहाँ से दूर ही सही लेकिन दिल के बहुत ही करीब है और भावना देश रहा है हेलो टू यू सरगम है अमन सी जो है गाना वो डेडिकेट कर रही है अपने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए जो नाम है ऋषि डीन के लिए आपके लिए गाना जाएगा और हमारी प्यारी नीलमणि मंगरा जी है जो हमें देख रही है हेलो टू यू हारंगी आप रहती हैं सुरीनाम आपके लिए गाना हम चला रहे हैं और प्रतिमा जो है गाना मांग रही है पति कृष्ण और मामा बसंती फ्रॉम प्लेन मान्यो राधा शिवचंद है जो हमारे सिलेक्शंस को बहुत ही एंजॉय कर रही है रतन के लिए शैलेंदर गिल है जो इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं थैंक यू सो मच और साथ ही साथ में गाना जाएगा रोहित जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बोबास है एक बार फिर

से 90s का ये खूबसूरत गीत सलामी फिल्म से लिया गया। और साथ में तरुण जो है गाना वो मांग रहे हैं मामा प्रेमिला किस्टू। चलिए ये गाना उनके लिए, होप शी विल एंजॉय।

वैसे ये गाने हमें पता है बहुत से लोगों को पसंद है, लम्हे फिल्म से लिया गया और गाना खास कर मोहन कुमार के लिए, रुमिता गुजा नमस्ते आपको। और साथ ही साथ में गाना मांग रही है रुमिता गुजा जो है, गाना मांग रही है अपने परिवार के लिए, दशरथ परिवार और गुजा फैमिली के लिए। रुकाया फ्रॉम रेजुई, थैंक यू। अरविंद बिसोनी आपके लिए भी गाना हम चलाएंगे। अरविंद जो है गाना वो मांग रहे हैं बिसोनी फैमिली के लिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: दिलों की आवाज दिलों की आवाज प्रोग्राम यहां पर हम चलाएंगे 80s से लिया गया एक बहुत ही प्यारा तराना बड़े दिल वाला फिल्म से लिया गया जहां जीवन के दिन जो है बहुत ही छोटे हैं लेकिन हम सब दिल वाले के लिए है आज है कल नहीं है कल क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता लेकिन आज जो है इस पल को हम ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे यादगार बनाएंगे साथ मिलकर और यहां हमें सुन रही है बाबिता बुला की नमस्ते आपको खेमराज सुसन हेलो इंदिरा रामधुनिया हेलो जी कैसे हैं आप अनिल रामदवा जो हैं आपके लिए गाना हम चलाएंगे शैलेंद्र आपके लिए भी गाना हम चलाएंगे क्यों नहीं और रिशान आपके नाम यशवीर केशव ये गाना आपके लिए यश बुधवा प्रणाम आपको जीवन के दिन छोटे सही लेकिन हम सब दिल वाले हैं और खास गाना हम चलाएंगे सूरज जी के लिए जी हाँ जो हमेशा साथ देते हैं और वो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम ट्रियोली

चलिए अगला गाना हम चलाएंगे साकुन के लिए, एस और के लिए, आपके लिए भी, और स्वीराज आपके नाम, दीपशिका बुदारू गाना मांग रही है अपने लिए, बुदारू परिवार के लिए और धनु परिवार के लिए, रानी जो है आपके लिए भी गाना हम चलाएंगे, कोमल, करुणा चतवा, दिवंती मोहन,

चलिए अनिल सी पॉल के लिए जो कल इंग्लैंड जा रहे हैं उनके लिए भी गाना हम चलाएंगे और यहाँ पर हेमराज है जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम वाको आपके नाम भी हम गाना चलाएंगे और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त होता है आपने साथ दिया बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते रहिए मिलते हैं बहुत जल्द उषा को दीजिए इजाज़त नमस्कार आदाब शुभ रात्रि

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 9:03 हो गल बा सभी प्यारे श्रोतागण के हमारा नमस्कार स्वीकार कर जा। आज हर रविवार के दिन और रात्रि में तो ठंडा गिरता तो हर खातिर भोजपुरी तड़का मन कर ले कोनो बढ़िया गाना सुने के तो अवश्य नंबर वाग मिला ला और झट से मांग कर जा। अभी से रात के 11 बजे ले उषा तो हर संगे जी हाँ भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में नंबर वा घुमावा कत्सौ दे कथोवै सैक और अपन मिसाज भेज सकब जा ऑन सैक डू सैक एंड सेट 005। चल आज का पहल का गीत सुना जा पोपोरी किशोर किमिया के गावल गीत।

सुनो बस तू ऐसे काम पड़ल वहां

भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:24 हो गल बा और चला अगला गीत की शोर किमिया के गावल गीत और ये गाना खास कर निर्मनी की खातिर जोन हमने के सुना था वाकवा से

चल भोजपुरी बॉयज के गावल गीत और ये गाना अनिता जी खातिर जो हमने के सुना काफी कॉम्फ्लक्स से और जितना कोई के वक्त काम करा था ये गाना एक खातिर

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: चला साथी लोग ठंडा के मौसम तो चला ला बहुत कोई ठंडा खुशी रहेलन तो औरो कोनो बात गर्मी के मौसम के मजा लेवेलन जा यही तो जीवन है कभी खुशी कभी गम कभी बारिश कभी गम और यहाँ पर सोना नुयन के गावल गीत ई गाना खासकर अमृता जी खातिर जन रही ला मोताबा और ई बखत हमनी के सुनता गाना मांगत वंजा पति इंदिरन खातिर और बेटा साइलेश

जब बत्ती से धुआं निकलने लगी तो तेल डालने से क्या होगा। जब असर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर प्या

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौखट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या?

रविवार की रात बा 10:09 हो गल बा साथी लोग अपन परिवार के साथ समय बितावत अवंजा अपन परिवार के हमेशा आगे रखे काहे कि परिवार के लिए ही तो हमने काम करत है सा परिवार के तनी सुन अपन समय दिया आज के तनाव के जिंदगी में परिवार के साथ बहुत आवश्यक है ई बात पर हरदम ध्यान दिया और ई गाना जलसा लालबा 2025 के बेस्ट भोजपुरी गीत किशोर किमिया के गावल गीत और गाना खासकर रामधानी परिवार खातिर जोन रहीला शामुनी और बखत हमने के सुनाता और पिटिया परिवार खातिर

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: 10:28 हो गल बा जिंदगी जोन हताई गोर हस्या हा एकर अर्थ कौन ची हा कोई के पता नहीं चलेला अर्थ ढूंढते ढूंढते जिंदगी खत्म हो जाला पर जवाब नहीं मिलेला यह खातिर बोलल जाला चार दिन के जीवन में जी भर के जी ल जा समय नहीं बाते जकान अहंकार और नफरत करे के तो चला प्यार बाटा और अगला

गीत सुना चौथारी माचो के गावल गीत और गाना रूपल खातिर जो रहिला आले ब्रियों और गाना मांगा तो वन जा बहन इंदिरा और बहन सती खातिर

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: रात के 10:51 भाई बहन लोगन बहुत धन्यवाद बाकी इतना भक्त हो गए फिर भी आप लोगन साथ देवा तवजा हमेशा सहयोग देते रहिए सबके योगदान से ही एकता से ही मानव की प्रगति होवेला शुभ रात्रि उषा को दीजिए अनुमति नमस्कार

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।

0: जी रेडियो हर पल आपके साथ
1: रेडियो मॉरिशस
0: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस

0: अरे हम तो गिर पड़े।
1: You're listening RM Free Radio.